आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे।

देखो, जिसने भी कहा है टाइम इज मनी, शत प्रतिशत सही कहा है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और वक्त आजकल के जिंदगी में, दुनिया में इतनी अहम चीज़ हो गई है। मतलब सही है, जिसने भी कहा है टाइम इज मनी इज एब्सोल्युटली राइट। और मुझे बताइए, ऐसे कितने ही लोग हैं आपके ज़िंदगी में जो बेवक्त, जब आपको ज़रूरत हो, आपके लिए बिल्कुल हाजिर हो जाए। गिन सकते हो ना आप उंगली पर, आई एम श्योर ऐसे लोग ना जिंदगी में बहुत कम ही होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे

लोग हैं जो आपके लिए उनके पूरे बिजी डे रूटीन से, शेड्यूल से, जिंदगी से आपके लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं. तो बॉस, यू आर एब्सोल्युटली लकी माय फ्रेंड. तो बस ऐसे लोगों को ना हमेशा से अपने पास रखना, अपने करीब रखना, और उनके लिए भी ना हमेशा अपने जिंदगी से कुछ ना कुछ वक्त हमेशा निकाल देना. मैं हूँ आफरीन, आपके साथ इस खूबसूरत ख्याल के साथ शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और मेरे पास तो आपके लिए वक्त ही वक्त है, स्पेशली अगले 4 घंटे. अरे बहुत बातें करेंगे और बहुत टाइम स्पेंड करेंगे राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na virtual la burka. Milci, burka.
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको, वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है?
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी, जी
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा।
1: हाँ।
2: 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 balls left, दे नीड 12 runs टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर 1 मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
5: The Mentalist Suhani Shah.

0: देखिए, आप कोई नई कंट्री की ट्रिप अगर प्लान कर रहे होते हो तो कौन सा ख्याल पहले आता है? होटल बुक करना है, फ्लाइट बुक करना है? नहीं, वीजा प्रोसेस कितना सिंपल है ये सोचते हो आप? लेकिन जब बात हमारे कतर की हो ना, तो कतर ने इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल और हेसल फ्री बनाया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और हमारे कतर का हया प्लेटफॉर्म ना ग्लोबल हेडलाइंस में है।
1: क्या खबर कतर?
0: खबर ऐसी है दैट हया को 2026 स्टीव अवार्ड्स फॉर टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस मिला है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। इट्स अ सिल्वर अवार्ड। अब हया सिर्फ एक विजिटर एंट्री या वर्ल्ड कप वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहा, आज ये एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है, जहां वीजा एप्लीकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, अप्रूवल्स, पेमेंट्स और नोटिफिकेशंस, ये सब कुछ ना एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाता है और बिल्कुल सीमलेसली। देखिए, 2025 में हया ने करीब 850,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस प्रोसेस किए हैं और एवरेज हर 35 सेकंड में एक ई वीजा प्रोसेस हुआ है, एंड दैट्स लाइक सीरियसली वेरी इंप्रेसिव। देखिए, हम कतर में रहते हुए शायद इस कन्वीनियंस के इतनी आदि हो चुके हैं कि भले वो मेट्रैश हो या हया हो या गवर्नमेंट सर्विसेज हो, काफी काम ना हमारे बस कुछ क्लिक्स में हो जाते हैं। लेकिन जब आप ना ये दूसरे कंट्रीज ट्रैवल करते हैं, तब रियलाइज होता है कि पेपर वर्क, अपॉइंटमेंट्स, अप्रूवल्स कितना टाइम ले सकते हैं। इसलिए जब हया को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये उस एक्सपीरियंस का रिकग्निशन है जो मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स एक्चुअली फील करते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। आप मुझे बताइए कि ऐसी कोई कंट्री का वीजा प्रोसेस जो 35 सेकेंड्स में होता है, अगर पता है तो बताइए मुझे। 5000196 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मीनवाइल लग लगाना आपका इंतजार कर रहा है और मेरे शीट्स हॉट।

देखो जब मूड ऑफ रहता है तो क्या करने का मन करता है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कभी ऐसा हुआ है कि दिन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है, बॉस ने डांट दी, गाड़ी भी खराब हो गई है, काम सही से बन नहीं रहे हैं, और तब आप क्या सोचते हो, यार ना बिरयानी खाने का मन कर रहा है या फिर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ऐसा होता है क्या आपका? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, जब स्ट्रेस होता है ना अमूमन लोगों को तो किसी का दिल ना लौकी या सैलड खाने का मन नहीं करता। सबको अपना अपना ना कम्फर्ट फूड ही याद आता है, और मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऐसा रिसर्च कहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रेस के टाइम पर हमारा ब्रेन उन चीज़ों की तरफ खींचता है जो हमें कंफर्ट और फैमिलियरिटी फील कराती है। इसलिए किसी के लिए वो गर्मा गर्म चाय हो सकती है, किसी के लिए बिरयानी हो सकती है, किसी के लिए चॉकलेट्स जैसे मेरे लिए और आपके लिए वो क्या चीज़ है जो आपको कम्फर्ट देती है? आप भले ही कितने भी ज्यादा स्ट्रेस में हो और सडनली आपको ऐसा लगता है कि हमारा आधा टेंशन तो खत्म ही हो गया भाई ये मजेदार बिरयानी खाकर या फिर ये मजेदार कुनाफा खाके। उफ, मैं तो फिलहाल कोई स्ट्रेस में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये सारी चीजें खाने का मन कर रहा है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और व्हाट्सएप करके मुझे बताइए कि आपका कम्फर्ट फूड क्या है जो आपको स्ट्रेस में भी बिल्कुल सुकून देता है। 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर। Meanwhile, सुंदर रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव।

देखो सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, तो शायद ये वाली गलती आपने कभी ना कभी की होगी। फर्ज करो आप ट्रैवल कर रहे हो कतर से कहीं बाहर और एयरपोर्ट पहुंचते ही आप पहले क्या करते हो? हाँ मुझे पता है, येलो टेडी के साथ पे पहले आप सेल्फी लेते हो, पिक्चर्स लेते हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव हो तो फिर आप मेरे ख्याल से कभी ना कभी आपने ना बोर्डिंग पास के साथ में सेल्फी लेकर या बोर्डिंग पास का पिक्चर भी जरूर पोस्ट किया होगा। लेकिन इन सबके बीच में एक इन्फॉर्मेशन जो है जो आप तक शायद पहुंची नहीं है या फिर आप मिस कर गए हैं, और वो ये है दैट कतर की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने पब्लिक को एडवाइस किया है कि बोर्डिंग पास की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि उस QR कोड या बार कोड में सिर्फ सीट नंबर ही नहीं, कभी कभी आपकी ट्रैवल डिटेल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस हो सकती है। एंड ऑनेस्टली ना वेकेशन का एक्साइटमेंट इतना होता है कि हम स्टोरी डालकर वेकेशन मोड ऑन बस डाल देते हैं, इतना सोचते नहीं है। लेकिन मेरा सिंपल ट्रैवल रूल ये है आपके लिए कि देखिए मेमोरीज शेयर करो, जरूर शेयर करो, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं। विंडो सीट दिखा दो, क्लाउड्स दिखा दो, एयरपोर्ट पर कॉफी पी रहे हो ये दिखा दो, बाद में पहुंचते ही डेस्टिनेशन रिवील कर दो, लेकिन इन सब के बीच में बोर्डिंग पास ना मुन्ना ना, ये बिल्कुल भी रिवील नहीं करना है आपने। अच्छा बोर्डिंग पास रिवील करने के बाद ये तो एक बात हो गई, लेकिन पूरी फ्लाइट आपकी कंप्लीट होने के बाद इस बोर्डिंग पास को आपको डिस्कार्ड भी बड़ी केयरफुली करना है। इसे पॉकेट में रखकर या यहाँ वहाँ रखकर भूल नहीं जाना है, क्योंकि QR कोड जो है उसको टेयर कर दीजिए, श्रेड कर दीजिए, एंड देन यू डिस्कार्ड योर बोर्डिंग पास दिस वे वंस योर एंटायर ट्रैवल इज कम्प्लीट। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क, हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है, इट इज वेरी इजी टू ट्रोल बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Bollywood Only on Mirchi It's hot
4: It's all down to Dhoni isn't it 4 balls left they need 12 runs to win
5: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala lekin use pata hai Salman Khan abhi apne farm house mein horse riding ke bare mein soch rahe hain
6: ya are you thinking of like a flying carpet are you thinking of flying carpet
7: kaise kiya seriously kaise kiya ye
5: use sab pata hai Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखो मुझे सुनने वाले सारे पेरेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से एक परफेक्ट स्कूल आपके बच्चे के लिए कैसी होनी चाहिए? वो जो अच्छी पढ़ाई थे, या फिर वो जिसकी फीस बजट में हो, या फिर वो जो घर के सबसे करीब हो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और सच कहूं तो इन तीनों से पहले एक और चीज जरूरी है, वो है सही चॉइस। क्योंकि हर बेस्ट स्कूल हर बच्चे के लिए बेस्ट हो ये जरूरी तो नहीं है ना। और अगर आप कतर में स्कूल या नर्सरी ढूंढ रहे हो तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन का वेयर इज माई स्कूल ऑनलाइन सर्विस आपके काफी काम आने वाला है और आपका होमवर्क बचा सकता है। पोर्टल पर आप गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट नर्सरीज और एजुकेशनल सेंटर्स सर्च कर सकते हैं। और सिर्फ नाम की लिस्ट ही नहीं है, आप लोकेशन, एजुकेशन

लेवल, करिकुलम, म्युनिसिपैलिटी और स्टूडेंट कैटेगरी जैसे फिल्टर्स लगाकर ऑप्शंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं पेरेंट्स से जरूर कहूंगी, पोर्टल आपको ऑप्शंस दे सकता है, डिसीजन नहीं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद स्कूल विजिट जरूर कीजिएगा, सिर्फ क्लासरूम्स और फैसिलिटीज ही नहीं, थोड़ा सा कल्चर भी चेक कीजिए, टीचर्स बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कम्यूट प्रैक्टिकल है या नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपोजर कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप अपने बच्चों को वहां जेन्युइनली थ्राइविंग इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली कैसा होता है ना, द राइट स्कूल इज नॉट नेसेसरी द मोस्ट पॉपुलर स्कूल, इट्स द वन दैट फिट्स योर चाइल्ड। और क्योंकि अब सितंबर आएगा, कुछ करिकुलम्स के नया एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है, एंड आई एम श्योर एट दिस स्टेज आप लोग स्कूल्स ढूंढ रहे होंगे, या फिर ऑलरेडी इंटरव्यूज दे रहे होंगे, या फिर आई एम श्योर कुछ ऐसे एक्साइटेड पेरेंट्स होते हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए अभी से अपना होमवर्क कर रहे हैं, देन दिस इज द पोर्टल एंड दैट इज द मारिफ पोर्टल। मैं हूं आफरीन, माइक से दिल तक, राइट इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: virpa la burka. Mirchi, burka. Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार, ये
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं गुब्बारे वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है, आप
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: अरे यार इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
6: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
5: योर स्पेशल ऑफर?
6: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है, ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
5: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
6: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
5: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah.

ये कतर में रहते हुए आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हो या फिर फैमिली वीजा से कंपनी स्पॉन्सरशिप पे शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर ये एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो वैसे स्मार्ट तो आप है ही, आपको सब पता होता है, लेकिन कभी कभार एक जेंटल रिमाइंडर ही काफी हेल्पफुल हो जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट यानी PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में, जो एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है जो कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इशू करती है। इसका मतलब ये होता है दैट कतर में रहते हुए इस दौरान में आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सर्टिफिकेट मेट्रैश ऐप के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आप फैमिली स्पॉन्सरशिप से कंपनी स्पॉन्सरशिप में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जनरली PCC रिक्वायर्ड होता है, और अगर आप फैमिली वीजा पर ही रहकर कंपनी का वर्क परमिट बना रहे हैं तब भी एम्प्लॉयर को वर्क परमिट प्रोसेस के लिए कतर का PCC चाहिए होता है। देखिए कुछ एम्प्लॉयर्स आपसे आपका होम कंट्री का भी PCC मांग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिसी। अब सिर्फ ये नहीं है, कतर में अगर गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनी हो, हायरिंग के टाइम PCC मांगा जाना काफ़ी कॉमन लगता है यहाँ पर। इसलिए अगर आप जॉब स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में पहले से अवेयर रहना काफी स्मार्ट मूव होता है। देखिए कभी कभी ना एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ही आपके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को काफी स्मूथ बना देता है, तो PCC को लास्ट मिनट तक मत टास्क रखिएगा, पहले से ही रेडी रखिएगा इफ यू आर अंडर दिस प्रोसेस। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे जुड़ी हुई, कतर से जुड़ी हुई लाते रहूंगी राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। माइक से दिल तक आफरीन के साथ, ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

देखो ये देखकर तो पता लग रहा है कि वीकेंड बड़ा ही प्रॉमिसिंग है हमारे कतर का। देखो मौसम चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन हमारे वीकेंड कतर में ना बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। जैसे इतनी सारी चीजें चल रही है, वेरियस मॉल्स अक्रॉस कतर इज हैविंग द हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल। देखिए ध्यान में रखते हुए कि बाहर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इंडोर इवेंट्स ही किस तरह से है। जैसे लोकल डेट्स फेस्टिवल ईस्टर्न स्क्वायर सुखवाकिफ में, वो भी इंडोर है, एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है। पहले ये बता दूं, ये जो है यहाँ पर जबरदस्त डेट्स मिल रहे हैं, कितने किस्म के डेट्स, 100 से भी ज्यादा किस्म के डेट्स, और ये जो है ये 10 अगस्त तक चलने वाला है। वन मोर अट्रैक्शन आई वुड से इज द कलर वर्स एक्सपीरियंस विच इज हैपनिंग एट कतारा कल्चरल विलेज साउथ पार्किंग, और ये तो सितंबर तक चलेगा। तो ये वीकेंड अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप अगले वीकेंड चले जाना, टाइम है काफी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कतर टॉय फेस्टिवल के एक्टिवेशंस अब तक के बरकरार है, भले ही टॉय फेस्टिवल खत्म हो गया होगा जो QNCC नहीं DECC में चल रहा था, इफ आई एम राइट, है ना। बट उसके अलावा जो भी मॉल्स में एक्टिवेशंस है वो बरकरार है। देख रहे हो कि हमारा कतर, ये जानते हुए कि भाई गर्मी का मौसम चल रहा है, किस तरह से एंटरटेनमेंट जारी रहनी चाहिए वो बखूबी कर रहा है। सो यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट का डोज चल रहा है 89.6 पर She Wants It Hot।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

0: देखो, अगर हमारे कतर का एक सिनोनिम होगा तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल में तो सुकून। अच्छा सच बताओ, कभी नोटिस किया है कि हम किसी शहर या देश की तारीफ करते वक्त कहते हैं ना कि यार वहाँ के रोड्स काफी अच्छे हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स देखिए कितनी खूबसूरत है, लेकिन किसी जगह की असली क्वालिटी तब समझ आती है जब लोग कहते हैं कि हाय वहाँ कितना सुकून है। एंड यू एंड मी माई फ्रेंड्स, वी कैन रिलेट टू इट स्टेइंग इन कतर। ये हमारे कतर का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और इसी सुकून को एक बार फिर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। खबर कुछ ऐसी है।
1: क्या खबर कतर
0: के 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स में कतर को पूरे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के सबसे पीसफुल कंट्री रैंक किया गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के 163 कंट्रीज में से कतर 31st पोजीशन पर आता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है माय फ्रेंड्स। कतर पिछले 12 सालों से यानी 2015 से लगातार मेना रीजन का सबसे पीसफुल कंट्री बना हुआ है। एंड ऑनेस्टली द कंसिस्टेंसी इटसेल्फ सेज दिस इज द एक्चुअल सक्सेस ऑफ दिस कंट्री। और हम इससे ज्यादा रेजोनेट कर पाते हैं, इनफैक्ट ये लग्जरी को हम समझ नहीं पाते हैं जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या रात के 2 बजे फैमिली के साथ लौट रहे, तो ये ख्याल तो कभी नहीं आता है ना हमें कतर में रहते हुए कि यार कुछ गलत भी हो सकता है। नहीं, दिस इज व्हाट इट स्पीक्स वॉल्यूम। कतर इतनी ज्यादा सेफ है। इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है कि आज ही गौरव का कुछ साल पहले वॉलेट एक पार्क में घूम गया था एंड ही गॉट इट बैक। एंड आई एम श्योर वी ऑल हैव सो मेनी सिमिलर स्टोरीज। इफ यू हैव सम स्टोरीज लाइक दिस कि आपकी कोई चीज घूम गई हो, मिल गई हो एंड यू हैव रियल witnessed safety in real terms in Qatar, then please share with me on 5000 1896. मैं हूँ आफरीन आपके साथ अनमर्जी। इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ऐसे कैसे हो सकता है यार आफरीन? अच्छा, ऐसी कुछ रिएक्शन था मेरी फ्रेंड का। वेल, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि मैं वेकेशन पर गई थी, स्वीडन गई थी, और वहां पर मैं मेरी फ्रेंड से मिली। शी इज अ स्कूल फ्रेंड जो वहां पर स्वीडन में रहती है काफी सालों से। तब हम ना दो कंट्रीज के बारे में बात कर रहे थे, कतर और स्वीडन, जहाँ पर कितना एक्सट्रीम वेदर होता है ना। एक तरफ जहाँ पर इतनी ठंड होती है और एक तरफ जहाँ पर हमारे यहाँ पर इतनी गर्मी होती है। सो हाउ डू वी कोप विद द वेदर, एक्सट्रीम वेदर। तो मैंने कहा कि भाई कतर में तो यार काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ना रस्ते पर एसी है। एंड शी वॉज एब्सोल्यूटली फ्लैबरगास्टेड विद दिस सेंटेंस के रस्ते पर एसी, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। मैंने तो बड़े ही कन्वीनियंटली कह दिया कि हाँ ऐसा तो रहता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये आम बात थोड़ी ना है, दुनिया भर में ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट हम अगर गल्फ रीजन की बात करें तो ऐसा हर जगह पर नहीं है, लेकिन सोचने चाहे तो कतर में ऐसे कितनी सारी जगह है ना। एंड आई ऑल्सो रियलाइज व्हेन दिस वीकेंड मैं वेस्ट वॉक गई थी, और वेस्ट वॉक में जब मैं चल रही थी भाई, इतनी ह्यूमिडिटी हमारे कतर में, लेकिन नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ पसीना। दैट्स हाउ कतर इज ब्यूटिफुली बिल्ट। अगर मैं ओपन एसीज की बात करूँ तो कितनी सारी जगहें हैं, जैसे गिवान आइलैंड है, सेंट्रो है, देन वी ऑल्सो हैव कतारा कल्चरल विलेज जहाँ पर सबसे पहला एसी स्ट्रीट बना था, प्लेस वेंडम का जो आउटडोर एरिया है वो है, देन अलहजम मॉल जो है वो तो पूरी तरह से ऐसे ओपन में ही बना हुआ है ना, वहाँ पर भी एसी है। वेस्ट वॉक जैसे मैंने बताया, वहाँ पर भी एसी है आउटडोर। अगर देखा जाए तो ऐसी कई सारी जगहें हैं हमारे कतर में जहाँ पर आउटडोर एसी मिलता है। और ऐसे में ना जहाँ पर कतर में अब वेदर इतना ज़्यादा गर्म हो गया है, एंड यू रियली वांट टू टेस्ट कि अच्छा ये अब कितना ज़्यादा इफेक्टिव है आउटडोर एसी, देन यू शुड रियली गो एंड ट्राई दीज प्लेसेस। मैंने ऑलरेडी कर दिया है वीकेंड पर, एंड इट इज 100% परफेक्ट। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या? हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
2: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
3: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
2: क्या अब आप पागल है क्या?
3: पागल आप है, पागल आप
2: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
3: बोले चले जा रहे। बकवास कम करिए आप। हैं, किधर भागी है?
2: हेलो,
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने मेरे साथ जरा प्यार से कह दिए।
3: आज के बाद घर से आ रही ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

कभी सोचा है कि आपका अगर कोई माइंड रीड कर ले तो, मतलब एकदम सही सही आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। और यस, मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है, और वो कब क्या वही तो बताने आई हूँ मैं। यस, वेरी फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर आने वाली है 25th of September, और ये इवेंट हमारा मिर्ची आपका अपना मिर्ची लेकर आया है भाई। वेल, चलिए बात करते हैं सुहानी शाह के बारे में। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आपने इतने सारे वीडियोज इनके देखे होंगे, सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, वे शी इज एब्सोल्युटली रीडिंग द माइंड। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो मैजिशियन है, बट नहीं, वो अपने आप को एक मेंटलिस्ट कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ट्रिक्स दिखाना नहीं उनका काम है, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर को इतनी डीपली ये समझती है कि आपको सच में लगेगा कि भाई ये कैसे कर रही है, भाई क्या, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। बिलीव इट और नॉट, उन्होंने सिर्फ 7 साल की एज में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। आज उनके नाम पर हजारों लाइव शोज हैं, दुनिया भर में सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, और अब हमारे कतर भी वो लेकर आ रही है ये मैजिक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुक करो, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कतर में, है ना, मतलब मिर्ची पहली बार ऐसा कुछ लेकर आया है एटलीस्ट। सो यू कैन नॉट मिस सुहानी शाह, दैट इज हैपनिंग लाइव इन कतर 25th of September, और ये होने वाला है QNCC में। तब तक के लिए आप जो है फटाफट से जाइए SCT यानी सुनो सिटी से जाके अपनी टिकट्स बुक कर लीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्ची इट्स हॉट।

0: कभी ऐसा हुआ है कि दिल एक बात कह रहा हो और दिमाग दूसरी? मेरे ख्याल से ना हमारी ट्यूनिंग ही कुछ ऐसी की गई है कि ये दिल और दिमाग की ये जो ट्यूनिंग है, ये जो जोड़ी है, बिल्कुल हमेशा इतनी आसानी से ना एक साथ तालमेल नहीं करती। और इसी ख्याल पर आज मेरी शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, ए दिल तू धड़क मगर इतना तो सोच जरा, ए दिल तू धड़क मगर इतना तो सोच जरा कि तेरे जज्बात और है और मेरे हालात और है।
2: दिल है के मानता नहीं।
0: वो क्या है ना कि दिल की एक खूबी है और एक कमी भी है, वो सिर्फ महसूस करता है, हिसाब नहीं लगाता है। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट रन विद शी, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानिशा।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी।
3: शाबाश। डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11।
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: चोर करता है।
3: शाबाश। लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन।
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
4: पीके मेनन।
3: खादम।
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता। आदमी का नाम राजकुमार राव, रेडियो स्टेशन का मिर्ची। इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah, live.

देखो वैसे तो मैं अगले वीकेंड तक यानी वीकेंड पर आने वाले इवेंट्स की बातें करती हूँ, लेकिन अब लेकर आई हूँ कि यार बचे हुए साल में क्या कुछ होने वाला है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और देखिए भाई, अब तो ऑलमोस्ट हमारा आधे साल से ज्यादा खत्म हो चुका है, और जब रेस्ट ऑफ द ईयर बचा है, कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो? जैसे शैल कथारा हंटिंग एंड फाल्कन एग्जीबिशन, ये सितंबर के महीने में होने वाला है, और सितंबर के महीने में ही दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन होने वाला है। और जनरली ना ये वाले इवेंट है तो ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन, बॉलीवुड के कोई बड़ा स्टार आता ही आता है। करीना कपूर आ चुकी है, आलिया आ चुके हैं, ऐश्वर्या राय है, इस बार देखते हैं कोई आता है या नहीं। उसके अलावा अगर बात करें बड़े बड़े इवेंट्स में हमारे कतर की, तो कतर बोट शो भी नवंबर में लाइंड अप है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन इवेंट आई थिंक सो एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड इज शकीरा का कॉन्सर्ट। ये एक्चुअली स्टेडियम 974 में होने वाला है 18th of November को। एंड फॉर ऑल द स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, भाई फुटबॉल के बगैर हमारा साल तो इनकम्प्लीट सा ही रहेगा, राइट? तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वो भी होने वाला है नवंबर 19 से लेकर 13th of December तक। एंड देन F1 कतर एयरवेज ग्रैंड प्री, ये भी तो होने वाला है नवंबर में। सो यू नो यार, बहुत सारी चीजें लाइंड अप है, और दिसंबर के महीने तक तो मैं आई भी नहीं हूँ। कतर बलून फेस्टिवल वो भी होने वाला है, कतर T100 ट्रायल थॉन भी होने वाला है, और दोहा फोरम 2026। सो ऑल यू आई कैन सी इज भाई, साल अब तक खत्म कहाँ हुआ है, अब तो यार शुरू ही हुआ है। इवेंट्स का सिलसिला तो यहाँ पर अब बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking.

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो एंड वेलकम, क्या हाल चाल कतर वालों। वीकडेज की भाग दौड़ को करो थोड़ा साइड, वीकेंड है बॉस, सो लेट्स एंजॉय द राइड। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बातें और म्यूजिक के साथ खूबसूरत सी बातें, तो चलिए शुरू करते हैं वीकेंड का ये ब्यूटीफुल वाइब आपके साथ, आपकी अपनी ईशा के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 में शिवानी साथ।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: अरे क्लोजअप
1: को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया है? एक तो मतलब ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब नहीं
1: दीदी मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है। अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहु उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

ऐसी इवनिंग है जहाँ पे मैजिक सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि आपके माइंड के अंदर भी चल रहा है। Yes, you heard that right. Suhani Shah is coming to Qatar live for the very first time on 25th September. So, bhai, save your dates because Suhani Shah is known for her incredible mind reading, magic or psychology based performances. Aur ab aap apne इस एक्सपीरियंस को लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो शायद आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आपने कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा उनको मैजिक करते हुए, माइंड रीड करते हुए बेसिकली। तो बस अब आपको करना क्या है, अब आपकी बारी है उनको लाइव देखने की कतर में। तो अगर आप भी इस मैजिकल इवनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो अपने करना क्या, फ़ोन उठाना है फटाफट से और अपनी टिकट्स बुक करवा देनी है और अपने फ्रेंड्स की भी करवा देनी है स्नूनू ऐप के जरिए। जी हाँ, जहाँ पे टिकट्स ऑनलाइन हो चुकी हैं आप बुक करवा सकते हैं। 25th September को मिलते हैं सुहानी शाह के साथ एक मैजिकल एक्सपीरियंस को लेके स्टेडियम में। दास ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल पे चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

सोचो समर की एक ब्यूटीफुल सी इवनिंग है और आप अपने फेवरेट लोगों के साथ हो और मूड एकदम चिल है और तभी मिल जाए एक अमेजिंग सा सरप्राइज, तो भाई क्या ही कहने। सरप्राइजेस मतलब एब्सोल्यूट बारबेक्यू का वीकडेज का स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है एंड जहां पे संडे मंडे एंड ट्यूसडेज आप एंजॉय कर सकते हैं स्पेशल डाइनिंग एक्सपीरियंस के साथ, एक्साइटिंग प्राइजेस के साथ, क्योंकि लंच सिर्फ और सिर्फ 54 कतरी रियाल में एंड डिनर इज 74 कतरी रियाल। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है, ये स्पेशल ऑफर सिर्फ 15 अक्टूबर 2026 तक ही है, तो समर को बोरिंग क्यों बनाना है भाई, जब आपके पास मौका है एबीज के साथ एंजॉय करने का। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाओ और टेबल बुक कराओ और इवनिंग्स को बनाओ डिलीशियस, मेमोरेबल और फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो बुक नाउ एंड लेट द समर बिगिन एट एबीज, यानी कि एब्सोल्यूट बारबेक्यू। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 107।

इमेजिन करो आप एक रूम में बैठे हो और सामने कोई स्ट्रेंजर खड़ा है और वो आपको कुछ बातें करता है आपसे और आपको ऑब्जर्व करता है और फिर अचानक बोलता है कि आपके माइंड में इस समय जो नाम चल रहा है वो है ये। एंड आप सोचोगे कि वेट, इसने मेरा माइंड रीड कैसे कर लिया भाई? बस यही से शुरू होता है मेंटलिज्म की फैसिनेटिंग दुनिया। मेंटलिज्म बेसिकली एक ऐसी परफॉर्मेंस आर्ट है जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे, मेमोरी और सजेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके थॉट्स को पढ़ सकते हैं और इसी दुनिया का एक जाना पहचाना नाम जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ ना, वो है सुहानी शाह का। जी हाँ, सुहानी शाह जो आ रही हैं आपकी कतर में लाइव, आप उनको देखेंगे परफॉर्म करते हुए 25th of September को। मार्क योर डेट्स बिकॉज ये मौका ना खोने वाला नहीं है, क्योंकि सुहानी शाह ने बहुत कम उम्र में ना मैजिक की दुनिया में ना कदम रखा और धीरे धीरे मैजिक से आगे बढ़कर मेंटलिज्म की और अपनी पहचान बनाई है। उनके परफॉर्मेंसेज में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि हमें सिर्फ सरप्राइज नहीं करती है वो, बल्कि हमें अपने ही माइंड और बिहेवियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है यार। वाकई में अगली बार अगर कोई बोले ना आई कैन रीड योर माइंड, तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा दिमाग में कैसे घुस गया, बल्कि सवाल ये होना चाहिए मैंने अपने माइंड के बारे में ऐसा क्या रिवील कर दिया जो मुझे खुद पता ही नहीं चला। देखिए, सोचना समझने की बात है। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
2: मैं करूँ?
3: आप करोगे?
2: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
3: सर, वो तो पता है मेरा बस चलता है, एक एक को घुसड़ मार के आती हूँ।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड?
1: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
4: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताओ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
1: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।

है, जब मेरी शादी हुई ना तो एक रस्म होती है हमारी शादी में कि जब लड़की को स्टेज पे बिठाया जाता है और बहुत सारी लेडीज आती हैं और श्रृंगार का सारा सामान उसकी गोद में रखती हैं एंड पैसे रखती हैं, मेकअप का सामान रखती हैं और जो चुन्नी होती है उसको सिर पे चढ़ा के मुंह मीठा करवाया जाता है। और आपको पता है उसको मुंह मीठा किससे करवाया जाता है? शवारे से। शवारे मतलब ड्राई डेट से। और ये ट्रेडिशन जो है ना शवारा खिलाने का, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि वो जो ड्राई शवारा है अगर दुल्हन ने या दूल्हे ने खाया और अगर उसके बाद कोई और उसका वो जूठा खाता है तो उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। बाकी होता क्या है ये नहीं पता, लेकिन हाँ उसको ही खिलाया जाता है जिसका नेक्स्ट नंबर होता है। कुछ ट्रेडिशंस जो होते हैं ना बड़े ही फनी होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। पर याशवारे से मुझे याद आया कि ये ड्राई डेट्स बहुत अमेजिंग होती हैं, हम बचपन में बहुत खाते थे, लेकिन हाँ

0: ये सारी फार्मिंग होती है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल. अगर आप जाएंगे तो आपको और मजा आएगा. बाकी ऐसे ही मजेदार बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वाला. इट्स हॉट
1: मिर्ची फ्रेश माल.
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी, इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
1: है? मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी, जी
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: it's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर 1 मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
5: The Mentalist Suhani Shah.

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर संडे से फिटनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं और फिर थर्सडे तक सिर्फ प्लान ही रह जाते हैं, तो दिस इज योर साइन। हाँ, इस फ्राइडे अपनी मॉर्निंग को बनाइए एनर्जेटिक, रिफ्रेशिंग एंड फुल ऑन हेल्दी। भाई करना क्या है, दोहा फेस्टिवल सिटी लेकर आया है इंडोर 5 किलोमीटर मॉर्निंग जॉगिंग सेशन, जहां पे आपको सबसे बड़ी बात ये है कि भाई बाहर की गर्मी की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप प्योर एसी के कंफर्ट में जॉग भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, टॉक भी कर रहे हैं और अपनी फिटनेस गोल्स की तरफ से स्ट्रांग स्टेप भी ले रहे हैं। तो भाई एक तरीके से फायदे का ही सौदा है ना। तो ये इवेंट 31 अगस्त तक ही है, फ्राइडे को शुरू हो रहा है, टाइमिंग इज 7:30 to 9 एंड एंट्री इज टोटली फ्री। तो बस आइए और इंजॉय करिए। तो अपने रनिंग शूज निकाल लीजिए, अपने दोस्तों के भी निकाल लीजिए और उनको घर से बाहर निकाल के अपने साथ ले आइए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिल सकता है। एक हेल्दी ट्विस्ट अगर आपने अपनी लाइफ में देना है तो ये इससे बढ़ के हेल्दी ट्विस्ट कोई हो ही नहीं सकता भाई। हर किलोमीटर के साथ सिर्फ कैलोरीज ही नहीं बर्न होती, आपका स्ट्रेस भी बर्न होता है। तो बस मिलते हैं आपको दोहा फेस्टिवल सिटी, जहाँ पे रन, वॉक, स्माइल एंड रिपीट। बस स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मर्सी 1 इट्स हॉट।

कतर टॉय फेस्टिवल को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कतर टॉय फेस्टिवल एक्टिवेशंस भी लागू हो चुकी हैं हमारे दोहा कतर में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसी एक्टिवेशंस की जहाँ पे हर मॉल में आपको एक कैरेक्टर का सारा सेटअप मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट बारबीज, तो वो एक पर्टिकुलर मॉल में आपको बारबी का पूरा सेटअप मिलेगा। वहां जाके आपके बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अभी तक टॉय फेस्टिवल नहीं गए हैं तो जगह जगह मॉल्स में ये छोटे छोटे जो एक्टिवेशन लागू किए गए हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर कुछ मैं आपको बताऊं उसमें से, तो बात करें पिक्सार की, तो पिक्सार आपको मिलेगा प्लेस वैंडम में, बारबी मिलेगी सिटी सेंटर में, और मोआना मिलेगी दोहा फेस्टिवल सिटी में। ऐसे ही बहुत से और मॉल्स हैं जहां पे आपको ये एक्टिवेशंस मिलेंगी। तो देखिए, ये एक फायदे का सौदा इसलिए भी है क्योंकि ये 30th सितंबर तक है। बच्चे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ देयर वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं हर मॉल में। किसी भी मॉल में जा रहे हैं वहां पे उनको टॉय फेस्टिवल से रिलेटेड हर चीज मिलेगी। बस करना ये है, जाना है मॉल, एंजॉय करना है, बस थोड़े से पैसे भी खर्चने हैं और यहीं पे भी जाइए, आपको ये सारी एक्टिवेशंस अभी से मिल जाएंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ, इंटरेस्टिंग इवेंट्स के साथ। सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची माने इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

0: पटक मटक लॉन्डो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो

0: बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

शादी की ये घड़ी मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि समय खत्म हो चुका है ईशा, अब तेरे जाने का समय आ चुका है। और इसी बात पे ना थोड़ी सी लाइनें आपको सुना दूं। मुलाकात चाहे छोटी सी हो, मुलाकात चाहे छोटी सी हो, यादें रह जाती हैं, बातें खत्म हो जाएं पर स्माइल्स रह जाती हैं। तो आप इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए अंदाज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीकेंड वीकेंड वाइब्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू, सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

पता है, कभी कभी लगता है कि कोई तो मेंटल लोचा जरूर है। मिर्ची अंशु यार पता है मेरे साथ ना एक चीज है, मैं ना नाम याद नहीं रख पाती। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी का नाम याद नहीं होता, अगर हम रूटीन में मिल रहे हैं, रोज बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो मैं आपका नाम कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अगर हम एक आधी बार कभी मिले हैं या बहुत टाइम पहले मिले हैं, एंड अगर आप फिर 3-4 महीने बाद मेरे सामने आ गए ना, तो मुझे इस बात का रियलाइजेशन तो होगा कि हाँ मैं आपको कहीं ना कहीं तो देखी हूँ, लेकिन वो नाम क्या था ये मैं भूल जाती हूँ। एंड इसलिए कई बार अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट मुझे अपने फ़ोन पर ढूंढना होता है, जिस शख्स से मैं एक बार मिली हूँ लेकिन बाद में फिर से कोई काम आ गया, भाई मुझे याद ही नहीं आ पाता कि उस शख्स का नाम क्या था। एंड आज की डेट में जब मैं सोचूं तो लगता है स्कूल कॉलेज टाइम्स में वो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, मैं कैसे पढ़ जाती थी मुझे जेन्युइनली याद नहीं है यार। हैविंग सेड दैट, हफ्ते भर की जो खास बातें हैं वो आप ना भूलें, आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए रिपीटिशन के तौर पे बेस्ट ऑफ द वीक लेकर सैटरडे की दुनिया में एक बार फिर से आ गई हूं मैं। तो चलिए जी, अंशु आपका रिविजन कराने के लिए पूरी तरह से तैयार। एंड अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो फटाफट से मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दो 5000 1896 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची बंदी का नाम। अंशु एंजॉय।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: हेलो, सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार? ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्र फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है। मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले तो, फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते
1: थोड़ी ना।
2: आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम
3: है, सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कारपेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live in

यार मुझे एक बात लगती है कि अगर किसी के पास ये हुनर हो कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को पकड़ सके, तो सबसे पहले दुनिया में किस किरदार की वाट लगेगी, जरा सोचें। मिर्ची अंशु यार अब की बार तो बात तय है कि हस्बैंड से ज्यादा वाइफ्स की वाट लगने वाली है, क्योंकि अगर हस्बैंड ये बात को एनालाइज कर ले कि उसकी बीवी के दिमाग में क्या चल रहा है, ना अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगे, तो क्या ना हमारे पास लड़ाई करने की कोई वजह बचे ना। एंड जब तक ये हम ना करें हमारा खाना हजम हो तो कैसे हो? अंशु आपसे यही कहना चाह रही है कि 25th ऑफ सितंबर को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में कुछ ऐसा ही होने वाला है। वेल, इंडिया की लेजेंडरी मेंटलिस्ट सुहानी शाह आ रही हैं दोहा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड ये कोई सिर्फ मैजिक शो नहीं है, ये सिर्फ इल्यूशन भी नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके बाद आप बस एक ही बात बोलेंगे, भाई ये किया कैसे, सिखा के जाओ प्लीज। इस वक्त अगर आप देखने की कोशिश करें तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स ऑन गोइंग है, जिसके चलते 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं ऑन योर टिकट्स बुकिंग। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से स्नूरो एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड करें, एस सिटी विजिट करें एंड अपनी टिकट्स जल्दी से सिक्योर करें। इनफैक्ट 160 रियाल्स में आपको 2 टिकट्स भी मिल रही है, भाई गजब फायदे का सौदा है, बाद में कहना मत मेरे दिमाग में तो था जाने का। आ रही है वो, आपके दिमाग के हाल को पहले से जानती है। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: यार पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
1: मिर्ची अंशु
0: बस वक्त इसी की बात कर रही हूँ मैं। क्या रफ्तार पकड़ी हुई है यार इसने। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब स्कूल के वेकेशन शुरू हुए थे तो सबसे पहला सवाल ये था कि आखिरकार 2 महीने किस तरह से बिताए जाएंगे, क्योंकि वेकेशन में घूमने फिरने तो 1 महीने का वक्त निकलेगा, लेकिन बचे हुए 1 महीने निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। लेकिन जरा देखें, देखते देखते जुलाई का महीना भी निकल गया, अगस्त जो है ऑलमोस्ट आधा पूरा होने वाला है, यानी एक बार फिर से 15 दिनों के बाद जिंदगी में कोई फेज शुरू होगा तो वो जद्दोजहद का। भाई सुबह जल्दी उठना है, टिफिन बनाना है, एंड सबसे बड़ा सवाल कि टिफिन में क्या बनाना है। मतलब हर दिन इतनी सारी वैरायटी कोई इंसान लाए तो कहां से लाए। एंड हमारे बचपन का दौर क्या कमाल था, याद है आपको, हर दिन बकायदा हम टिफिन बॉक्स में एक ही चीज लेकर जाते थे। मेरा तो फिक्स था आलू की सब्जी रोटी एंड साथ में अचार, नहीं तो भिंडी की सब्जी रोटी एंड अचार। एंड हमने कभी कोई कंप्लेन नहीं की, हर दिन वो खाना इतना लजीज, इतना कमाल लगता था ना। लेकिन आज के बच्चों को देखो, वैरायटी की दुकान बन के बैठे। वैसे यूजुअली आप अपने लंच बॉक्स में अपने स्कूल टाइम में क्या ले जाया करते थे? 5000 1896 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है। अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people. It's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क। हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है। इट इज वेरी इजी टू ट्रोल, बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6, 89.6, it's hot.
0: सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6, 89.6,
2: it's hot.

0: यार कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये एक हुनर अगर मेरे अंदर आ जाए ना, सच कह रही हूँ, लाइफ की ना जाने कितनी समस्या का समाधान मिल ही जाना है।
1: मिर्ची अंशु,
0: अरे तुमने भी न जाने कितनी दफा मेरी तरह बस यही सोचा होगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बस ये पता चल जाए, खासकर अपने पार्टनर को लेकर या तो फिर अपने बॉस या अपने कोलीग्स को लेकर। लेकिन ये हुनर अगर इतनी आसानी से मिलने लगा तो बात ही क्या है। लेकिन इतना बता दूं, कोई है जो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ना ही सिर्फ ये पता किया जाए कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि साथ ही तुम्हारी चारों खानों को चित्त करने का काम और तुम्हें तुम्हारे ही राज बताने का काम करने वाली है। कतर की हिस्ट्री में पहली बार अगर कोई शिरकत करने वाली है तो वो इंडिया की नंबर वन एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह। तारीख जो है याद रखिए, इट इज गोइंग टू बी 25th ऑफ सितंबर, जब कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में सुहानी का मैजिक हम सबकी जिंदगी में सर चढ़कर बोलेगा। और एक बात यहाँ पर मैजिकल तौर पे और भी बता दूं, अगर लगता है कि फटाफट से इस इवेंट में आने की तैयारी करना है तो इस वक्त चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जहां पर 20% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं स्नूनो सिटी यानी कि एस सिटी पर जाकर। एंड अगर लगता है दो लोगों को साथ में आना है तो 150 रियाज में 2 टिकट्स मिल रही है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुकिंग करिए, बाकी आप और हम मिलकर सुहानी का मैजिक मिलकर जिएंगे। क्या कहती पब्लिक, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Buscaba la nossa cabana. Cabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या? हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
2: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
3: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
2: क्या आप पागल है क्या?
3: पागल आप है, पागल आप
2: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
3: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
2: हेलो,
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
3: आज के बाद घर से गए आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at SCT Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

0: पानी बचाओ अभियान, ऐसा तो कुछ अपनी जिंदगी में शुरू नहीं किया, तो भाई ये मेरे पीछे क्यों ही पड़े हुए?
1: मिर्ची अंशु।
0: सुबह के ठीक 6:30 बजे मैं घर से बाहर निकली एंड रियलाइज हुआ कि ना बारिश हुई ना मैंने पानी बचाओ अभियान शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद मैं जो है अपने आप भीग गई। यानी ये असर एंड ये कसर मेरी जिंदगी में अगर किसी ने किया तो वो है इस मौसम ने। वेल, आज अंशु एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी है एंड सच कह रही हूँ, जिस तरह की गर्मी का आलम इस वक्त आप और हम महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पता है कि घर पे भुर्जी बने ना बने, लेकिन इंसान की भुर्जी कैसे बनती है ये बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ना कहना चाहूंगी, जहां पे एक तरफ गर्मी है वहीं दूसरी तरफ ह्यूमिडिटी और भी ज्यादा है। नाउ ऐसे स्टेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है खुद को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें, पानी जो है ज्यादा से ज्यादा पिएं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ड्रिंक होते हैं, मैं तो कहती हूँ ओकेजनली अगर आपको लगे आपको नींबू पानी नमक भी पीना है भैया जरूर पिएं, क्योंकि हाइड्रेशन इज द की एट द मोमेंट, ना ही सिर्फ खुद को गर्मी से बचाने के लिए लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए। और हम जो है बड़े ये बात समझते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे जो है ना खेल कूद में ये बात भूल जाते हैं कि ओकेजनली लगातार पानी भी पीते रहना है। तो बच्चों का खासकर बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बाकी घर पे कोई अच्छी शिकंजी बन रही तो हमें जरूर बुलाएं। 5000186 वी विल गेट कनेक्टेड देयर। Instagram मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टेडियम टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानीशा।

यार मैंने तो कैलेंडर में डेट ब्लॉक कर ही लिया है कि यहाँ मुझे जल्द पहुँचना है। आपका क्या हाल है? मिर्ची अंशु मतलब ऐसी चिलचिलाती गर्मी में कोई सामने से आकर कहे कि इंडोर इवेंट अटेंड करने का अच्छा खासा मौका है तो पीछे हटोगे क्या? भाई एसी वाला टेंट है, खाने पीने का ढेर सारा ऑप्शन है, खरीदी करने के लिए भी बहुत कुछ है। अरे लोकल डेट्स एग्जीबिशन की बात कर रही हूँ, अब तक के सबसे बड़े एडिशन के साथ सुख वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में एक बार फिर से आ चुका है। कम्प्लीट एसी वाला माहौल है, जाओ यार जाके इंजॉय करके आओ। देखो मैंने तो सोचा है कि ना ही सिर्फ लोकल डेट्स एंजॉय करना है लेकिन वहां पे ढेर सारी डेट्स से बनी हुई जो डिशेस है ना मुझे वो भी लेकर आनी है। पता है क्या, प्रोसेस डेट्स तो अक्सर आए दिन हमें मिल ही जाते हैं लेकिन ये जो रॉ कच्चे वाले डेट्स है ना जो ऑर्गेनिकली पकते हैं भाई इन्हें खाने का मजा जो है ना काफी अलग है। एंड हर साल मैं वेट करती हूँ कि लोकल डेट्स एग्जीबिशन कब आने वाला है। एक बार फिर से इनकी बाहर आ चुकी है तो सूक वाकफ ईस्टर्न स्क्वायर अंटिल 10th of August जाना है, खूब सारा डेट्स खरीद के ले आना है एंड घर पे उसके बाद जो कुछ अच्छी डिशेस बने अंशु को जरूर बुलाना है। प्लान सेट है जी, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
2: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
1: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: यार सच कह रही हूँ, मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हर घर में कॉमन जरूर है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे बस यही सवाल कि आज खाने में बनेगा तो क्या ही बनेगा। यार सच कहूँ, जब मैं अभी वेकेशन पे गई थी, इतने दिनों तक बाहर थी, बहुत कुछ बाहर खाना खाने का मौका मिला, नए डिशेस ट्राई करने का मौका मिला, लेकिन ना एक पॉइंट के बाद मैं इतनी त्रस्त हो गई थी, अगर मुझे जेन्युइनली किसी बात की क्रेविंग हो रही थी तो बस यही कि मुझे कहीं से दाल चावल मिल जाए। मतलब मेरा कम्फर्ट फूड अगर लाइफ में कुछ है ना तो बस यही, और वो है दाल चावल। आप मुझे कुछ भी खिला दो, मेरा पेट नहीं मलने वाला जब तक मुझे ये ना मिल जाए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अक्सर आपके घर में रूटीन में क्या खाने में बनता है, और इसके अलावा आपका कंफर्ट फूड क्या है? क्योंकि खाने की बात हो रही है, एक बज गए, भूख लग रही है, इसलिए आपसे सोचा जरा सवाल पूछ लो। मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु। मासलामा हबीबी।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: सबसे खतरनाक चीज चेंज नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बदलाव को पहचान ना पाना। और इस वक्त बॉलीवुड बिल्कुल उसी मोड पर खड़ा है। ऑडियंस बदल चुकी है, उसकी पसंद बदल चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्मों को ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा। हेलो, आई एम सुरेंद्र सुंदरम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, जहां हर हफ्ते सिर्फ गानों की रैंकिंग नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन भी सुनाई देती है। शुरुआत कर रहा हूँ विद गाना नंबर 20, व्हिच इज फ्रॉम धुरंधर एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट।
4: नंबर 20।

लेकिन इसके बाद एक बिल्कुल नई एंट्री, टाइटल भी क्वर्की, गाना भी क्वर्की, और जब क्वर्कीनेस की बात हो रही है तो अमित त्रिवेदी से बेहतर नाम मिलना मुश्किल है। उन्हीं का कंपोज किया हुआ, उन्हीं का गाया, कुमार भाई के लफ्जों के साथ नंबर 19 पर डेब्यूइंग राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टाइटल सॉन्ग नंबर 19।

0: Slipping down by one position, Arijit Singh ka gaya Tujhko from Cocktail 2. Lekin apni memories ki hard drive se ek aisa chapter dhoondke nikal raha hoon that is gonna take you back to your friends and time. इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है, हम फिल्मों की टिकट्स खरीदते हैं और बिना पता चले उनसे अपनी पर्सनालिटी भी खरीद लाते हैं। कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े, कभी बोलने का लहजा और कभी जीने का तरीका। एक वक्त था जब तीन दोस्त अगर गोवा जाते थे तो लोग बस पूछते थे ट्रिप अच्छा था, लेकिन फिर एक फिल्म आई, उसके बाद हर दोस्तों के ग्रुप को लगा खोआ जाना तो बनता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा।
0: उस फिल्म का नाम था दिल चाहता है। 25 साल पूरे हो चुके हैं इस आइकॉनिक मास्टरपीस को, और सोचो एक फिल्म ने कितनी खामोशी से पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया था। आमिर खान की वो स्टाइलिश दाढ़ी सलोन की रेफरेंस फोटो बन गई। फरहान अख्तर के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा बन गई। वो सबसे बड़ी बात, उस फिल्म ने हमें सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी साथ बदलने का नाम भी होता है। इसलिए 25 साल बाद भी दिल चाहता है पुरानी नहीं लगती। हर जनरेशन को लगता है कि ये फिल्म तो शायद हमारे लिए बनी थी, और उसी साउंड ट्रैक से एक गाना जो आज भी उतनी ही मुस्कुराहट दे जाता है। दिल चाहता है कि मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं ओवर द इयर्स, ओवर द एपिसोड्स, लेकिन दिस वन इज द फन सॉन्ग। दिस इज वो लड़की है कहां, शान और कविता जी की आवाज में माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो, बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं
2: क्या, कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब नहीं
2: नहीं नहीं
1: मैं कल को फोटो
2: खींचे। अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
6: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah.

0: किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है अपनी ही रचना, अपनी ही क्रिएशन को किसी और के हाथों बदलते हुए देखना। शाश्वत सचदेव के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज जाइए सजना इज एन ओरिजिनल फ्रॉम धुरंधर। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने आंखों से तूने क्या कह दिया नाम के इस गाने का नया वर्जन आपको सुनाया भी था और अपनी बात भी रखी थी। लेकिन फिर उस गाने के ओरिजिनल कंपोजर जतिन ललित के जतिन ने भी इस रीमिक्स को लेकर अपनी राय रखी। मुझे लगा इससे बेहतर जवाब शायद मैं नहीं दे सकता था।
1: हमारी एक फिल्म थी गुलाम, 1998 की फिल्म थी ये। इसी पिक्चर का एक गाना है, उसका मैंने रीमिक्स सुना और उसमें क्या किया है उन्होंने, जो बीट डाली है वो डांसिंग बीट डाल दी। अब डांसिंग बीट से हुआ क्या है, एज ए कंपोजर अखरता है, क्योंकि ये डांसिंग का गाना नहीं है, ये मॉडरेट गाना है, मॉडरेट रिदम है इसकी और मॉडरेट मूवमेंट है। और जो आमिर खान और रानी मुखर्जी का जो शूट किया है वो मिड शॉट है और क्लोजअप है और बहुत अच्छा लगता है गाने में प्योरिटी। अब इसमें जो रिमिक्स किया है उसमें वो डांस डाला है उन्होंने, लेकिन एक तस्वीर जो बनी हुई है जिसके रंग सब जगह सही सही है उसमें और दूसरे रंग डालना तो वो तस्वीर को बिगाड़ने की बात ही हो जाती है, वो उससे खूबसूरत नहीं हो सकती
0: यार। बस इसलिए हर गाना रीमिक्स नहीं मानता, कुछ गाने सिर्फ दोबारा सुने जाने के लिए बने होते हैं। खैर, नंबर 16 पर चटनी है जो अपनी जगह बनाए हुए है। नाम चाहे कितना भी अतरंगी क्यों ना हो, आखिरी फैसला हमेशा वक्त ही करता है। पर जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, गाना मॉडरेट था जैसे जतिन सर ने बताया, इट वॉज अ रोमांटिक सॉन्ग, बट इस बार इसको डांस नंबर बना दिया है। नंबर 15 पर आंखों से तूने ये क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है। नंबर

0: प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाइ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu, बुक योर्स नाउ।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नंबर 14।
9: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

पता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी? उसे लगा हमने रोमांस से प्यार करना छोड़ दिया है। शायद इसलिए स्क्रीन धीरे धीरे एक्सप्लोजन से भर गया, यूनिवर्स बनने लगे, इवेंट फिल्म्स बनने लगी और प्यार, इश्क, मोहब्बत बैकग्राउंड में चला गया। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने ओटीटी पे एक शो देखा जिसका नाम था मुसाफिर कैफे। विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो, महिमा मकवाना, और उसे देखते हुए एक बात समझ आई, यार प्रॉब्लम रोमांस की कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम अच्छे रोमांस की थी। क्योंकि जब कोई कहानी दिल से लिखी जाती है ना, हम आज भी उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ टूटते हैं और उसके साथ तो पारा प्यार कर बैठते हैं। मुसाफिर कैफे कोई लाउड शो नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घुस जाता है, वैसे ही जैसे कभी तमाशा घुसी थी, वैसे ही जैसे सैयारा ने एक इंपैक्ट क्रिएट किया था, और वैसे ही जैसे कल हो ना हो या शाहरुख खान की कोई भी लव स्टोरी हमारे जहन दिलो दिमाग में घुस जाती है। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में रोमांस कम हो गया है तो शायद आपको सिर्फ मीडियम बदलना पड़ेगा, एहसास नहीं। और जब बॉलीवुड की बात निकली है तो उसका वो दूसरा चेहरा भी देख लेते हैं जहां पे है मस्ती, हंगामा एंड फुल ऑन मैडनेस। नंबर 12 पे है साड़ी, धमाल 4 से।

0: प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: क्या बताऊँ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूँ।
2: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5-10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।
3: रख, रख।
4: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
5: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट। आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर 1 मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 11.

0: कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद वैसे महसूस नहीं होते जितना हमने शायद उनसे उम्मीद लगाई होती है। वे जुनून के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि शायद बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की थी ही नहीं। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया की खामोशी, उसका दर्द, उसके किरदार और उसकी तन्हाई, ये सब मोहित सूरी ने बनाई थी। इसलिए जब मोहित और मिथुन साथ साथ आते हैं तो गाने सिर्फ साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं रहते, वो कहानी की धड़कन बन जाते हैं, और शायद मिथुन भी इस बात से वाकिफ हैं।
1: मैं खुद तो एक जरिया मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी कैसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि एक धुन की जो बारीकी होती है कि उसको। कई बार मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट्स डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते, वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है।
0: इसी पार्टनरशिप ने हमें आशिकी 2 दी, सैयारा दी और बहुत से यादगार लम्हे दिए। लेकिन अगर मोहित सूरी और मिथुन की दुनिया से मुझे सिर्फ एक गाना अपने साथ ले जाना हो तो मेरे लिए हर बार वो गाना होगा एक विलन का हमदर्द, अरिजीत सिंह की आवाज में। दिस वन इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

धुरंधर ने इस साल बॉक्स ऑफिस नहीं लाया, एक बहुत बड़ा मिथ भी तोड़ दिया कि ऑडियंस को बस वही पुरानी फॉर्मूला वाली फिल्में चाहिए। जी नहीं, ऑडियंस को बड़ी फिल्में चाहिए, बड़े आइडियाज चाहिए, बड़ी कहानियां चाहिए, बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए। एंड पिछले हफ्ते इंडिया ने ये बात फिर से प्रूव कर दी। एक तरफ है स्पाइडरमैन एंड दूसरी तरफ है क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी। दोनों के लिए थिएटर्स भर गए। लोग लैंग्वेज देखकर नहीं गए, स्केल देखकर गए, एक्सपीरियंस देखकर गए। अब जरा अपनी तरफ देखिए, हम कितनी बार वही घिसी पिटी एक्शन फिल्में बनाते हैं, वही प्रेडिक्टेबल कॉमेडी बनाते हैं, वही रूटीन फैमिली ड्रामा बनाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि ऑडियंस आखिर थिएटर्स आ क्यों नहीं रही। सच तो ये है यार कि ऑडियंस की चॉइस बदल चुकी है, लेकिन बॉलीवुड का कंफर्ट जोन अब तक नहीं बदला है। शायद बॉलीवुड इस बात से वाकिफ भी नहीं है। और जब भी कोई फिल्म मेकर सच में कुछ बड़ा सोचता है ना, चाहे वो धुरंधर हो या कोई भी और फिल्म हो, ऑडियंस उसे कंधों पर उठा लेती है। शायद वक्त आ गया है कि बॉलीवुड छोटी सोच की फिल्में बनाना बंद कर दे, क्योंकि ऑडियंस अब बहुत बड़ी हो चुकी है। ऑडियंस ने इस महीने दो बातें बिल्कुल साफ कर दी। अगर सपना बड़ा होगा, हम थिएटर जरूर आएंगे, और अगर कहानी वही पुरानी सोच वाली हुई तो स्टार कास्ट भी हमें सीट से उठने पर मजबूर नहीं कर पाएगी। कॉकटेल सिर्फ 150 करोड़, इन स्पाइट ऑफ द कास्ट इट हैड। इनफ सेड। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको, वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
3: जी बोल रहा हूँ।
2: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए, मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
3: कहाँ ना सर?
2: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
3: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
2: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए, आगे ले आओ।
3: मैं दे दूंगा।
2: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी, इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
3: 4 यूनिट?
2: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको, आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको, हाँ ब्लड नहीं
3: चाहिए
2: इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
3: क्या चढ़ाना है?
2: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
3: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है?
2: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
3: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
2: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
3: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: यूरिन का भी कुछ होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
3: जी, जी
2: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
3: अच्छा,
2: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
3: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
2: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
3: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
2: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए, और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
3: जी
2: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
3: सर नंबर कहाँ मिला आपको?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स।
5: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
11: Number 8.

चार साल तक इंतजार किया कि when will Yash return to the screen, और एक ही साल में he's got two films coming out back to back. तबाही from Toxic, Not Safe for Kids, and then दूसरी फिल्म है रामायण, जिसका ट्रेलर आए हुए अब कुछ वक्त हो गया है. और ये शायद पहली बार हुआ है कि मैंने किसी ट्रेलर पर तुरंत ओपिनियन देने से खुद को रोक लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक और फिल्म का ट्रेलर नहीं था, ये रामायण है. और रामायण को हम रिव्यू नहीं करते, उसके सामने हमारी अपनी यादें खड़ी हो जाती हैं, बचपन की, दूरदर्शन की, रामानंद सागर जी के उस सीरीज की. हर जेनरेशन की अपनी रामायण है. इसलिए पिछले हफ्ते मैंने ट्रेलर को दोबारा देखा और फिर दोबारा देखा. सच कहूं, मेरी सबसे बड़ी चिंता है इसके VFX. जी हाँ, मेकर्स तो ये कह रहे हैं कि फाइनल CGI अभी और ज्यादा इवॉल्व होना है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि वो वैसे ही हो, क्योंकि जब आप 4,000 करोड़ रुपए की दुनिया बना रहे होते हैं तो ऑडियंस सिर्फ विजुअल्स नहीं देखती, वो उस दुनिया पर यकीन करना चाहती है. लेकिन एक जगह जहाँ ट्रेलर ने मुझे पूरी तरह जीत दिया, एंड दैट इज यश. देखो, रावण को अगर हराना है तो पहले उसे हराना नामुमकिन लगना चाहिए, और जब यश स्क्रीन पर आते हैं वही एहसास देते हैं. नाउ, मेरा सबसे बड़ा इंतजार ट्रेलर का नहीं था, म्यूजिक का था, क्योंकि रामायण का असली सफर हमारी यादों तक गाने ही पहुंचाएंगे. फिलहाल नंबर 6 पर इस हफ्ते है शरारत, जो है फ्रॉम धुरंधर, अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए है. लेकिन रीवाइंड में चलते हैं रामायण के डायरेक्टर की तरफ, जिन्होंने दंगल बनाकर हमें यकीन दिलाया था कि वो कहानियां दिल तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं. बस अब दुआ है कि वही जादू नितेश तिवारी रामायण में भी दिखाएंगे. दंगल, प्रीतम दा का म्यूजिक, दलेर पाजी की दलेर आवाज, माय पिक ऑफ द वीक.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD स्नूनू, बुक योर्स नाउ।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 4.

0: डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है. एंड देन एक मोहित सूरी होता है जिसके सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, म्यूजिक ही कहानी सुनाता है. इसलिए चाहे जहर हो, जन्नत हो, आशिकी 2 हो, एक विलन हो या फिर सैयारा हो, उन फिल्मों के गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल के अंदर चलना बंद नहीं करते. नौ गाना नंबर 5 था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है. और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंड ट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है. तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का? मोहित ने खुद उसका राज बताया.
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बजेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं. जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है. तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ही गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है. मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे. मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूं? तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं.
0: यार बस यही फर्क है. और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं. क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया. फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है. तो दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के. इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन.
2: नंबर 4.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
4: मैं करूँ?
5: आप करोगे?
4: नहीं, मैं करवाता हूँ। मतलब मेरा होता है
5: वो तो पता है। मेरा बस चलता है एक एक को घुसण मार के आती हूँ।
4: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड।
3: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
7: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
8: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
9: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai? Ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala. Lekin usse pata hai. Salman Khan abhi apne farm house mein horse riding ke bare mein soch rahe hain ya
10: are you thinking of like a flying carpet? Are you thinking of flying carpet?
11: Yes. Kaise kiya? Seriously? Kaise kiya ye?
9: Usse sab pata hai. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
12: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
13: Number 3.
14: Thank you.

0: my God, Chinnari Chinnari, after so many weeks, has finally climbed to number 2. Even though ye ek remake gana hai, even though it has nothing on the original song from BB number 1 starring Salman Khan and Sushmita Sen, uske bawajood gana jo hai wo track kar raha hai audience ke saath, and that is why itne high spot par hai. But hey, is hafte ek aur baat pata chali and samajh aaya कि कभी कभी बॉलीवुड एक एक्टर को फ्लॉप डिक्लेयर करने की इतनी जल्दी में होता है कि वो भूल जाता है कि ऑडियंस ने तो उसे कब का अपना बना लिया था.
1: कभी कभी

डूड 11 साल बाद इमरान खान अपने कमबैक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई क्योंकि इमरान कभी सुपरस्टार थे ही नहीं लेकिन वो हर कॉलेज की कैंटीन में जरूर रहते थे

यू माइट नॉट लाइक द फिल्म, लेकिन उनकी फिल्मों में एक ऑनेस्टी थी, एक ऑकवर्डनेस थी जो उन्हें हीरो कम और अपना दोस्त ज्यादा बना देती थी। यस, हर फिल्म नहीं चली। लेकिन शायद इन्हीं फेलियर्स ने इमरान को एक्टिंग से ही दूर कर दिया। लेकिन वक्त का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जिस एक्टर ने रोमांस के साथ करियर शुरू किया था, वो 11 साल बाद फिर एक रोमांटिक फिल्म के साथ ही लौट रहा है। फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, एंड देखते हैं कि इस बार कहानी क्या मोड़ लेती है। और जो रोमांस की बात निकली है, तो उस एक्टर की तरफ चलते हैं जिसने इमरान खान के डेब्यू के 2 साल बाद ही खुद डेब्यू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। नंबर 1 पर एक बार फिर रणवीर सिंह का गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और इसी के साथ एक और काउंटडाउन, एक और बात फिर साबित हो गई है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन सिर्फ वही गाने और फिल्में टिकती हैं जो दिल में अपनी एक स्पेस बना लेती हैं। नंबर वन पर लगातार डोमिनेट कर रहा है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। बट दैट इज इट फॉर द मिर्ची टॉप 20 दिस टाइम अराउंड। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक म्यूजिक सुनते रहिए, खुश रहिए, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
2: अरे सर जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
3: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
4: अमित चू।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: कैसा लगता है जब हमारे से भी ज्यादा कोई हमारा ख्याल रखता है? यस, हम आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ जो हमारा समय समय पर ध्यान रखती है, कहीं ना कहीं हर वक्त हमारे सेहत के लिए परेशान रहती है। उन्होंने सारे के सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज और डॉक्टर को एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया है, एंड दिस इज रिगार्डिंग फूड बॉर्न डिजीजेस, यानी कि कोई फूड पॉइजनिंग का कंफर्म केस या फिर सस्पेक्टेड केस दिखाई पड़ रहा है, उससे 24 आवर्स के अंदर उन सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को रिपोर्ट करना है और डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना है। और इनका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका नाम है सेव्स, उसी सेव्स पर इसकी रिपोर्टिंग करनी है ताकि टाइमली एक्शन लिया जा सके और ये काफी बड़ा हो जाए उससे पहले इसे कंट्रोल किया जा सके, तो सही टाइम पर इस आउटब्रेक को रोका जा सके। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर नोटिस MOPH ने सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करके कहा है कि आपको फूड पॉइजनिंग केसेस पर जितनी जल्दी हो सके 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। एंड दिस इज व्हाई आई लव कतर, यहां के एक एक चीज इतनी प्यारी है, हमारी और आपकी सेहत का ख्याल ऐसे रखा जाता है मानो हम इस पूरे परिवार कतर का हिस्सा हो। MOPH को दिल से थैंक यू जो हर समय हमारी सेहत के बारे में सोचता है, क्योंकि भैया वाकई इस दुनिया में एक सच्चाई तो है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा अटर चटर पटर मत खाइए, बहुत हेल्दी खाइए ताकि आप फिट एंड फाइन बने रहें। मौसम देख रहे हैं, ऐसे ही मौसम में डायरिया वायरिया हो जाता है। अपना ध्यान रखो। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हेलो
2: हेलो, सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार? ये क्या आपने कम तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है। मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले।

0: से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
1: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
0: थोड़ी ना
1: मैंने आपने नहीं बताया आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
0: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
1: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
0: तो आप हमें फोन कर रहे हैं गुब्बारे वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
1: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे,
0: फोन थोड़ी ना होते,
1: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
0: फोन मत करिए,
1: यहाँ फोन मत करिए यार।
2: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
0: हेलो
2: भाई साहब, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
0: अरे सर, काम का टाइम है, आप फालतू हैं।
2: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
0: कुकड़ू कु।
2: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
5: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं,
8: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

अरे कोई बात नहीं, आपको खबर नहीं है तो हम आप तक पहुंचा ही देते हैं। मस्त मौला गौरव। और अगली खबर उनके लिए जो म्यूजियम्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। यस, तो हम आपको बता दें कि कतर म्यूजियम्स अगस्त के मंथ में भी लेकर आया ढेर सारी एक्टिविटीज उनके डिफरेंट म्यूजियम्स में। अगर हम समर स्पोर्ट्स फन फैक्ट्री की बात करें तो ये चलेगा 1st ऑफ अगस्त से 29th ऑफ अगस्त के बीच 3-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में। एंड यहां पर आप अगस्त 1st से 29th सेलिब्रेट कर सकते हैं। वेल, म्यूजियम मेमोरी गेम ये नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में 10th ऑफ अगस्त एंड 17th ऑफ अगस्त को खेला जाएगा। ये बच्चों के लिए एक जबरदस्त एक्टिविटी होने वाली है। इंटरनेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट हो रहा है 12th ऑफ अगस्त को, यस, एट कतर म्यूजियम। इसके बाद अगर बात करें तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे अगस्त 19th। एंड फोटो खिंचाने का शौक आजकल दुनिया में हर इंसान को है। एंड इससे रिलेटेड एक फायर स्टेशन सिनेमा पर होने वाला है इवेंट अगस्त 19th को। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं तस्वीर नाम से। इसके अलावा फैमिली वीकेंड ऑलरेडी चल रहा है 20th से 22nd ऑफ अगस्त कतर म्यूजियम में, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए ये फैमिली वीकेंड होगा 20th ऑफ अगस्त से लेकर 22nd ऑफ अगस्त तक। ये आप शामिल होने के लिए आपको इन्वाइट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कतर म्यूजियम 18th एंड 19th ऑफ अगस्त को वाटर कलर पेंटिंग लेकर आ रहा है, बच्चों के लिए एक जबरदस्त क्रिएटिव आइडिया एंड ढेर सारे इवेंट्स की रेंज। ये बताती है कि कोई बच्चा अगर घर नहीं भी जा पाया तो कोई बात नहीं, उसके लिए मौके ही मौके एंजॉय करने के। एंड मजलिस फिल्म क्लब ये MIA लाइब्रेरी में, यस, आपको मिलेगी अगस्त 30th को। इसके लिए हम आपसे कहेंगे, आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं कतर म्यूजियम की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ये सारे इवेंट्स वहां भी लाइंड अप है। एंड ये बस बताना चाहता हूं कि कतर के कोने कोने में सेलिब्रेशन हर दिन चलता है, बस आपको पता होना चाहिए। और पता लगाने के लिए क्या करना है, ट्यून करते रहना है मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

दो लोग अगर आंख मार दे तो फिर तीसरे को बेवकूफ बना ही देते हैं, दोस्तों का यही तो काम है। लेकिन कोई है जिसको आंख मारने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपके दिमाग को घुमा देगी, दिन में तारे दिखा देगी। बात करो दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। सोचिए बंदी केविन पीटरसन जो कि इंग्लैंड के एक क्रिकेटर थे, फॉर्मर क्रिकेटर केविन पीटरसन के साथ कैच खेल रही है, उतनी देर में उनसे सवाल पूछती है और उस सवाल के सारे जवाब उसी बॉल में लिखे होते हैं और केविन पीटरसन एकदम से झन्ना जाते हैं, कहते हैं कैसे हो सकता है। ऐसा कमाल करती है सुहानी शाह कि मतलब आपसे बातें करी और इस बीच आपके ही जवाब को वो कहीं लिखी रहती है ऑलरेडी पहले से। इसे कहते हैं परफेक्ट माइंड रीडिंग, परफेक्ट इल्यूजनिस्ट एंड मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर में पहली बार आ रही है 25 सितंबर, जिसकी टिकट्स आप अभी बुक कर सकते हो एट स्नूनू सिटी, यस एस सिटी स्नूनू पर ये आपको मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर अभी कंटिन्यू कर रहा है एंड ट्रस्ट मी एक शानदार शाम 25 सितंबर को होने वाली है। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर प्रेजेंटेड बाय आईपे, हमारे एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वींस पापा जॉन्स, हमारे रेस्टो पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ पार्टनर किम्स हेल्थ, इसके अलावा इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, इसके अलावा प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, ये सारे के सारे एक साथ आए हैं ताकि एक बेहतरीन शाम को हम अंजाम दे पाए। तो अपनी टिकट्स बुक करा लो क्योंकि दिमाग के ना परखच्चे जो है वो एकदम उड़ जाएंगे जब सुहानी के मेंटल शो को आप देखोगे, कहोगे भाई अलग लेवल होने वाला है। चलो जी, अगर अभी तक आपने सुहानी शाह की वीडियोस नहीं देखे, गो चेक इट आउट, यू विल कम टू नो मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये बिल्कुल कुछ अलग और खास होने जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, वीकेंड पे दोस्तों के साथ प्लान भी कर लो और उनको भी बुक करा दो। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
3: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हेड व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
2: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपका टाइम और आपकी थोड़ी एनर्जी में बचा दूंगा। 89.6 जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। और कतर में अब कंट्रोल मेडिसिन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने आपके लिए एक नया अपडेट ला दिया है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक परमिट सिस्टम के जरिए कंट्रोल मेडिसिन ले जाने की इजाजत दे देगा।
1: #9749
0: यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो कंट्रोल मेडिसिन का यूज करते हैं, यानी कि वो मेडिसिन जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद ही आप उसे कैरी कर कतर में आ सकते हैं या कतर से जा सकते हैं। सो MOPH ने अब एक ब्रांड न्यू ई सिस्टम लॉन्च किया है, मतलब कंट्रोल मेडिसिन की प्रायर परमिट करने के लिए जो लेते हैं आप, उसके लिए अब लाइन में कहीं नहीं लगना है, जाना नहीं है, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन में जाकर अपलोड कर देना है और फिर उसे टाइम टाइम पर ट्रैक करते रहोगे। ई फॉर्मेट में आपको इसका सीधा परमिट आ जाएगा और वो लेकर आप आराम से अपनी इस कंट्रोल मेडिसिन को कहीं भी जा पाओगे। लेकिन याद रखिए, आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे और अप्रूवल में 3 working days का टाइम लग सकता है, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए ट्रेवल डेट से कम 5 दिन पहले ही आप इसे अप्लाई कर दो। मुझे लगता है ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। MOPH की वेबसाइट पर एक सिंपल गाइडेंस बुकलेट भी है, अगर आप जाओगे तो आपको वहां ये मिल जाएगा। आप इन सारे कंट्रोल मेडिसिन की लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आप कहोगे गौरव ने बता दिया भैया, बड़ा फायदा हो गया, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, सब कुछ ऑनलाइन ही आ गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया टेक्नोलॉजी की इस डिजिटल दुनिया में आप भी 89.6 मिर्ची वन को डिजिटली ट्यून करते रह करिए और सुनते रह करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी फायदे की बातें होती है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू, सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल
1: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 20 साल पहले ये किसी हॉरर शो का एक एपिसोड हो सकता था, लेकिन आज आज ये टेक्नोलॉजिया है। मस्त मौला गौरव आपके साथ है। देवी और सज्जनों, बताना चाहता हूँ कि कतर में अब इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सीज का नेक्स्ट टेस्टिंग फेज शुरू हो गया है, जहाँ पर कार्स बिना किसी ड्राइवर के आराम से चल रही है। LIDAR और AI सेंसर्स के साथ ये गाड़ियां खुद ब खुद सड़कों पर चल रही है, सेफ तरीके से आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है, अपना सेफ ड्राइविंग का डिसीजन खुद ले रही है। जहां ट्रैफिक कंजेशन है वहां आराम से ड्राइव भी कर रही है। और अच्छी बात यह है कि पहला फेज कंप्लीट, अब दूसरे फेज की तरफ बढ़ गए। और ऑनेस्टली मेरा यह मानना है कि आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर से टूरिस्ट आएंगे हमारे कतर में, रोबो टैक्सीज देख के कहेंगे भाई कतर अलग लेवल पे जा चुका है, ये तो फ्यूचरिस्टिक सिटी है। तो है, हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, हमने प्रयास किया है पिछले 20 सालों में, जमीन आसमान एक कर दिया है, तो अब रोबो टैक्सीज का सपना भी पूरा हो जाएगा। विश्वास कीजिए, आज से 20 साल पहले फिल्मों में किसी हॉरर शो में एक एपिसोड आता था जहां ड्राइवर लेस गाड़ी चल रही है और पीछे बैठे लोग डर रहे हैं, अरे बाप रे गाड़ी कौन चला रहा है। लेकिन आज आज ये टेक्नोलॉजी बन गया है, और इसीलिए कहता हूं समय के साथ आपने जो भी सपने देखे हैं विश्वास कीजिए वो एक दिन पूरे होंगे, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सपना है वो तो सच में हकीकत बनने के लिए आपको आया है। तो आप अपने ऐसे किसी सपने पर काम कीजिए, आप भी कर लेंगे, हो जाएगा, करने से ही होता है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na fiind vala burka. Milci, burka.
1: हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अबे गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या? हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या अब आप पागल हैं क्या?
2: पागल आप हैं, पागल आप
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप।
3: किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दिए,
2: आज के बाद घर से आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?

घर का, शॉप का, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने जा रहे हो तो 250 कतरी रियाल एक्स्ट्रा लगेंगे। यस, लॉ नंबर 8 ऑफ 2026 जो कि 2008 के एक कानून को अमेंड करने के लिए आज बना है, उसमें इंट्रोड्यूस की गई है एक 250 कतरी रियाल की लीज रजिस्ट्रेशन फीस। यस, ये आपके लीज रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स में अब थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, और क्योंकि कुछ सर्टेन बेनिफिशियरीज जो स्टेट प्रॉपर्टी के हैं उनके लिए ये कानून में बदलाव लाए गए हैं, और रेंटल डिस्प्यूट को लेकर कुछ कानून बदले गए हैं, अपील्स को लेकर, पेनल्टीज को लेकर भी कुछ कानून में बदलाव हुए हैं, उसके बारे में आपको आने वाले टाइम में पता लगता रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए 250 कतरी रियाल की लीज रजिस्ट्रेशन फीस ये हर प्रॉपर्टी पे, हर तरह की प्रॉपर्टी पे लगेगी, इसलिए थोड़ा सा तैयार रहिए। एक्स्ट्रा खर्चा हल्का सा आएगा, लगभग 20 रियाल पर मंथ और लग जाए ऐसा लग रहा है, तो बहुत बड़ी चीज तो नहीं हो जाएगी, है जी? कितनी सारी चीजें सस्ती ले रहे हो, पूरी दुनिया में पेट्रोल के प्राइसेस देखिए, 89.6 मिर्ची वाली था।

0: में की स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अरे यार इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
6: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
5: योर स्पेशल ऑफर?
6: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है, ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
5: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
6: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
5: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
7: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu, बुक योर्स नाउ।
7: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव।

0: एक शॉर्ट ट्रिप पे ओमान सलाला वाला जाना चाह रहे हो, एक खुशखबरी दे देते हैं।
1: मस्त मौला गौरव
0: हम आपको बताना चाहते हैं कि ओमान ने 14 डेज के लिए अपने यहाँ एंट्री वीजा रिक्वायरमेंट जो है उससे लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया है। और ऐसे एक दो देश नहीं है, 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैं जिनके लिए एंट्री वीजा रिक्वायरमेंट्स अप टिल 14 डेज उससे एग्जेम्प्ट कर दिया है ओमानी गवर्नमेंट ने। एंड बड़ी बात यह है कि ओमानी अथॉरिटीज का मानना है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में टूरिज्म को बढ़ावा देगा, लोगों की विजिटर्स की जो सर्विसेज है उसको अच्छी फील देगा, एंड इसी के लिए उन्होंने ये फैसला उठाया है। 100 से देश जो है ऐसे देश है 100 जहां पर आपको अप टिल 14 डेज एग्जेम्प्ट किया जाता है किसी भी एंट्री वीजा रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन इसके लिए कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं एंड उन कैटेगरीज में जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। एंड कुछ कंट्रीज यानी कि जैसे हमारा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, हमें सेकंड ग्रुप में रखा गया है। इसमें हमारे पास इधर वैलिड वीजा होना चाहिए, रेसिडेंसी परमिट होनी चाहिए यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या शेंजन कंट्री की, जापान की, या फिर आप गल्फ के रेसिडेंट्स होने चाहिए यानी कि जीसीसी काउंसिल के जो भी देश हैं आप उसके अगर रेसिडेंट हैं तो आप भी इस वीजा फ्री 14 डेज वाली चीजों में आएंगे। वेल ये 100 से ज्यादा देशों के लिए किया गया है एंड आई एम श्योर एक बड़ी मुहिम जो आने वाले दिनों में आपकी हमारी छुट्टियों के लिए कुछ तो बढ़िया लेकर आएगी। इन सब के बीच मस्त मौला गौरव इतना ही कहेगा, 25 सितंबर को अपने काम से छुट्टी ले लो, आपको आना है QNCC जहां पर लेकर आ रही है सुहानी द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। टिकट्स यू कैन गेट इट राइट नाउ एट SCT यानी कि स्नूनू पर, जल्दी जल्दी बुक करो, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। मस्त मौला गौरव के साथ ये घंटा आगे बढ़ रहा है मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे. तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क. हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट इजी.
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है. इट इज वेरी इजी टू ट्रोल, बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

नहीं जी, गर्मी तो और ज्यादा अब बढ़ेगी ह्यूमिडिटी के साथ। यस, इतने दिनों से जिस चीज से आप डर रहे थे और कह रहे थे अभी ह्यूमिडिटी उतनी नहीं हुई, ह्यूमिडिटी नहीं हुई है, अब QMD बोले तो कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमसे कहा है कि एक्सपेक्ट कीजिए इस वीकेंड आते आते तक जबरदस्त ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ने वाले हैं। एंड मैं इतना ही कहूंगा, आज 35-40 के आसपास है, मतलब ये और जंप करेगा, डबल तक जा सकता है। ऐसे में वेदर फोरकास्ट यही कह रहा है, August 3 की शाम के बाद से ही एंड ऑफ द वीक आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा मिस्टी फॉगी हो रहा है शाम को, लेकिन ये मिस्टी फॉगी असल में जबरदस्त तरीके से ह्यूमिडिटी लेकर आएगा। जो लोग ग्लासेस पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लिए थोड़ी मेहनत और होगी, बार बार चश्मे को पोंछना, जब भी वो AC से बाहर निकलेंगे तो उन्हें ये काम करना पड़ेगा। इस उम्मीद में कि अब गर्मी बढ़ेगी, लेकिन हम पानी पी पी कर इस गर्मी को हराएंगे। मस्मोड़ा गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में, लेकिन जाते जाते याद दिला रहा हूं, दी मेंटलिस्ट शुहानी शाह लाइव इन खतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिसकी टिकट्स आप बुक कर सकते हो SCT स्नूनू पर, जितनी जल्दी हो सके कर लो, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। बाद मत कहना गौरव भाई कोई जुगाड़ है क्या, अभी है, डायरेक्ट जाके बुक कर लो। 89.6 मिर्ची 1 मां सलामा हबीबी मिर्ची 60।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: ट्वेंटी टॉप टेन
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका. इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ. मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना बताना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है. शो में हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है. सम स्पेशल स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स एंड कॉम्पोज. The song features Elvish Yadav. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 10. स्टे कनेक्टेड फॉर द काउंटडाउन. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.
3: हाउ चुप कर लंग जावे कोल दी तू संग जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे.

0: गाने का नाम साड़ी सुन, सात हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ऑन गाना नंबर 10। ये उन गानों में से है जिनके मैं लिरिक्स कभी भी ठीक से गा के नहीं बता पाऊंगी, बस धुन गा दूंगी और समझ जाओ।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop songs of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Abhi ke abhi jao Instagram pe. फोन हाथ में ही रहता है, कनेक्ट करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कई बार ऐसा होता ना कि गाने के बोल नहीं याद रहते, सिंगर कौन है वो भी आप में भी भूल जाएं, लेकिन वो शुरू वाली धुन या कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस वो कहीं से भी आप सुने या एकदम पूरा गाना याद आ जाता है। सिर्फ गाना ही नहीं, फिर गाने की वीडियो, सिंगर की हिस्ट्री सब याद आ जाती है। हर कंपोजर चाहता है कि उनके गाने में ऐसी टेक अवे मेलोडीज हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल पार्ट हो जिन्हें कहीं से भी हम सुने और गाने के साथ जोड़ते हैं। एक आर्टिस्ट जो बहुत सक्सेसफुली ये करते हैं इस बादशाह। चाहे आप गाने के लिरिक्स से अग्री करें ना करें, लेकिन बीच में एक मेडली होती है जिसपे आप थिरक ही जाते हैं, लाइक दिस वन इन मर्सी। माय फेवरेट बादशाह इंट्रो हैज टू बी कर गई चुलका, ये वाला पार्ट सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रोज कि एक बार गाना सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते रहेंगे। नाउ @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको बादशाह के गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। जल्दी जल्दी @RJKanika पर आओ और बताओ ये कौन से गाने का इंट्रो है। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आगे मुझे बताओ, साइड वाले को मत बताओ, आई नो बहुत इजी वाला है। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना जो है ऐसे आर्टिस्ट का है जिनकी आवाज ही इतनी आइकॉनिक है दैट यू नो इट्स संजू राठौर। गाने का नाम है बैंगल्स, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक बैंगल्स इज ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एश किंग का किनिया सोनी ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 9।

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आखिर

0: यार क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
0: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी
0: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
1: लगाया नहीं
0: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: नहीं
0: दी मैं कल को, अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
0: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: अरे
0: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
0: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
0: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
0: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी, हेलो ऐसी कोई बात नहीं
0: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं,
1: दिखाइए
0: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
0: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स, है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah live.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: फरक की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे, अ नई नवेली एंट्री दिस वीक, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 6. मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर तारे को इतनी जोर से मैनिफेस्ट किया कि वो हमारे शो में डेब्यू कर चुका है ऑन नंबर 6. उससे पहले हमने सुना गाना नंबर 7 पर ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. यू नो, हर पार्टी में एक टाइम आता है जब सिर्फ पंजाबी गाने चल रहे होते हैं. कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल में हमारा एसोसिएशन विद पंजाबी म्यूजिक ही सिर्फ ये था. एंड जब मैं कहती हूँ ना हमारा, आई मीन वो लोग जिन्हें पंजाबी बोलनी या समझनी नहीं आती, और जितनी भी आती है वो सिर्फ गानों से आती है, अपने फेवरेट आर्टिस्ट और सिंगर से आती है. लेकिन पिछले 4-5 साल में आई हैव सीन अ मैसिव ट्रांजिशन. और मेरे जैसे लिसनर के साथ ही, जो पहले सिर्फ पंजाबी गानों को डांस वाले गानों की तरह कंसिडर करती थी, आज आई हैव माय मोस्ट रोमांटिक फेवरेट्स फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स. एंड ऑनेस्टली अब ये प्रूव भी नहीं करना पड़ता तो क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आती तो क्या मैं गाने सुन नहीं सकती, बिकॉज आर्टिस्ट लाइक AP टिल्लो, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, उन्होंने वो गैप ही क्लोज कर दिया. एंड इस लीग के आर्टिस्ट में एक नए फेवरेट है कॉल्ड कुंवर, जिन्हें आज हम एक स्पेशल स्पॉटलाइट देने वाले हैं. बंदा बटिंडा का है, टोरंटो में बेस्ड, काफी इंटरेस्टिंग उनका म्यूजिक है. पंजाबी फोक को लेके उसमें हिप हॉप R&B का तड़का लगाते हैं एंड बैंगर्स ऑन बैंगर्स रिलीज कर रहे हैं. कुंवर का एक गाना है कॉल्ड क्रेजी फॉर यू, जिसके पीछे सब क्रेजी हो गए हैं. सच अ बिग सोशल मीडिया हिट दिस सॉन्ग हैज बीन. और बिल्कुल वही वाली फीलिंग है जो एक बंदे को जब उसे किसी पे क्रश होता है तब जो एक फीलिंग होती है ना, दैट आई हैव गॉन क्रेजी, मैं उसके बारे में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दिन में भी, रात में भी, नींद में भी. फोन बार बार चेक करना, गेड़ी मारते हुए बस वही सोचते रहना, दोस्तों से मिलना सो दैट हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि उसके बारे में ना सोचें. ये सॉन्ग उसी को सेलिब्रेट करता है. इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, फुल ग्रूवी, लेट नाइट सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आर्टिस्ट का नाम है कुंवर, गाने का नाम है क्रेजी फॉर यू. आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Crazy for you by Coer this week on our Gana Spotlight at RJ Kanek on Instagram पर आओ. बताओ मुझे कोई ऐसा गाना जो आज भी आप रोज सुन रहे हो पर उसके लिरिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं. वो पंजाबी गाना हो सकता है, हरियाणवी गाना हो सकता है, इंग्लिश गाना भी हो सकता है, पर अच्छा लगता है तो लगता है. एट आरजे कनेगा पर आके मुझे बताओ आपका वो कौन से वाला गाना है. नाउ बैक द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अनीस सरकारन हृदय का गाना. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5.
1: नंबर 5.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उससे पहले नूर खान मधुर एक्सो का आरजू दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi
1: पर, this is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का countdown हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है RJ कनिका। Instagram पर जाओ, connect करो, मेरा handle is @RJ कनिका। कोई बातें बतानी है, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके hit me up. Trust me, it really matters a lot. कभी कभी हम किसी को कुछ बात बताते हैं कि हाँ आपका ये काम यहाँ देखा था, या कभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, करते वक्त शायद हमें रियलाइज नहीं होता कि वो दूसरे इंसान के लिए कितनी बड़ी डील होती है। कुछ तारीफें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं, कुछ इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। मेरे लिए वो आप लोगों के मैसेजेस हैं, एंड दैट पर्टिकुलर शो विच आई रिमेंबर, मेरा पहला शो था ऑन एयर, साल था 2019, अगस्त में ही मेरा पहला शो गया था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एंड मैंने फुल एडमिट कर रखा था शो पर कि मेरा पहला शो है। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे आप लोगों के, यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल द बेस्ट करने का, बहुत मजा आ रहा है एक गाने के बारे में, सो यू स्टार्टेड एंगेजिंग विद मी एंड इट मेड माई डे। अब मैं वो पुराना शो सुनती हूँ तो आई रियलाइज कि इतना भी अच्छा नहीं था, बट इट वॉज योर लव, योर कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और एक आर्टिस्ट के साथ तो ये और भी गहरा होता होगा, किसी फैन का मैसेज या किसी ऐसे इंसान से तारीफ जिन्हें आप खुद अपना आइडल मानते हैं। आई रिमेम्बर ऐसी ही मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी अरमान मलिक के साथ बैक स्टेज एक अवार्ड फंक्शन पे, आफ्टर उन्हें एक अवार्ड मिला। पर अरमान ने मुझे कहा दैट उन्हें जितने भी अवार्ड मिले, सोनू निगम ने जब एक बार अरमान को फोन किया था और तारीफ करी थी कि बॉय यू किल्ड इट, मैं तेरा गाना सुन रहा था रेडियो पे और मजे आ गए, सोनू निगम का वो कॉम्प्लीमेंट अरमान के लिए हर अवार्ड से ज्यादा मीन करता है। पिछले साल इसी शो पर मेरी सोनू निगम जी से बात हुई थी और मैंने उनसे इस बारे में पूछा, एंड दिस इज व्हाट ही सेड। अरमान टोल्ड मी दैट कोई अवार्ड या कोई वैलिडेशन उसके ऊपर नहीं है, ही सेड सोनू निगम कॉलिंग मी कि तेरा गाना रेडियो पे सुना है और तूने अच्छा गाया है इज अ बिगेस्ट अवार्ड ही हैज रिसीव्ड।
3: मैं इस फीलिंग को समझता हूँ, जब हमारे बड़ों ने हमारे बारे में कुछ कहा है, जब मंदाड़ी साहब ने मुझे बैक स्टेज कहा था एक बार, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम, मार्वल एट द वे यू सिंग एंड यू शुड हैव, यू आर बोर्न इन द रॉन्ग एरा, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम्स, वी वुड हैव गिवन यू द राइट कॉम्पिटिशन। ये मुझे अब इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। लता जी बोले मुझे सोनू निगम पसंद है, जगजीत सिंह बोलते थे मेरा फेवरेट है सोनू निगम और एआर रहमान, तब एआर रहमान भी नए नए थे, मैं भी नया था, सो यस आई वैल्यू दोस कॉम्प्लीमेंट्स।
1: यही बात है ना, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज कोई ट्रॉफी नहीं बट ये कॉम्प्लीमेंट है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वी हैव टू प्ले द सॉन्ग जिसे सुन के सोनू निगम की तारीफ निकल गई, हमारी 10 साल से निकल रही है, अरमान मलिक की आवाज, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है मैं रहूं या ना रहूं, आई कांट बिलीव इस गाने को 10 साल हो गए। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

The vocal capacity of Arman Malik is unparalleled and this song, अभी भी मुझे goosebumps आते हैं इस गाने को सुन के. I think this will go down as one of those classics जो मैं आज से 10 साल बाद भी play करूंगी और हमें ऐसा ही feel होगा. Arman Malik की आवाज, Arman Malik की composition, that was मैं रहूं या ना रहूं. At RJ Cutting on Instagram पर आओ and tell me about your story. कभी कोई ऐसा compliment मिला हो जो आज भी बहुत special feel कराता है, मुझे आके बताओ. Back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खा का गाना, इट्स अ कुक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके ये गाना पहली बार टॉप टू में गया है. ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, 16 हफ्ते इस काउंटडाउन पर बिताने के बाद पहली बार ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
4: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
3: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल।
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल। ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट। 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah, live.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, जल्दी जल्दी फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना तो बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई माइट फीचर योर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन द शो। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल कसर क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। और ये हमारे शो का सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सेगमेंट है। इतने सारे DMs, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि ये वाला गाना, वो वाला गाना। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज लकी अली का तेरे मेरे साथ। इस गाने के बाद इतने सारे थैंक यूज आए, इतने सारे और रिक्वेस्ट आए, और उन बहुत सारे रिक्वेस्ट में से द सॉन्ग वी गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

गाने का नाम है दीवाना तेरा बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। साल 1999, म्यूजिक साजिद वाजिद का, लिरिक्स फैज अनवर के। ये तब के हिंदी पॉप म्यूजिक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉप एल्बम में से एक थी एंड ये गाना उसका टाइटल ट्रैक। बट बियॉन्ड ऑल द नंबर्स, बियॉन्ड द सेल्स, आज 2026 में भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ, इट टेक्स अस बैक टू दोस सिंपलर टाइम्स यार, जिसके बारे में बस अब हम कहानियों में सुनते हैं, जब प्यार प्यारा था, इनोसेंट था, एक भोला बन था, वो पहले पहले प्यार वाली चीजें, यू नो, जब आप किसी को चाहते थे और बस चाह कर ही खुश हैं, एक तरफा प्यार में खुश हैं, तेरी मर्जी तो आए ना आए। आई रिमेम्बर सोनू निगम ने हमें कई दफा इस शो के जरिए बताया है दैट इतने सारे लोग उनके पास आते थे, बोलते थे ये गाना सुन के इतनी जोर से प्यार आया कि मैंने जाके प्रपोज ही कर दिया। एक्चुअली 90s एंड अर्ली 2000s का ये वेरी प्रपोजल फर्स्ट सॉन्ग था। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, लेट्स फील द लव इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम। दीवाना एल्बम से दिस इज दीवाना तेरा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनेका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10, एंजॉय।

0: What an utterly butterly song, man. Sonu Nigam ki awaaz and the range in this composition. Gaane ka naam Deewana Tera on a cassette classic this week at RJ Kaneko on Instagram par aao. 90s 2000s ki yehi wale gaane, you know, it makes us feel all the love again. Kaun sa hai wo gaana? From the pop classics, humse aake share karo. We might feature your favorite next week. Now back to the countdown, it's time for the numero uno song of the week. ये गाना 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर डटा हुआ है. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, यानी इस हफ्ते एक पोजीशन ऊपर जंप करके वापस इसने नंबर 1 की पोजीशन ले ली है. गाने का नाम है बैरन, आर्टिस्ट का नाम है बंजारे. दिस हरियाणवी सॉन्ग इज एवरीवेयर एंड वी आर हियर फॉर इट. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. बंदी का नाम है आरजे कनेका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. एंजॉय.
1: नंबर 1.

0: ना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
2: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
3: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: कहीं तो होगी वो फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना, तेरी आहटें फ्रॉम द मूवी एक में और एक तू, दोनों में क्या कॉमन है जल्दी से सोचो।
1: मिर्ची कैफे
0: शो शुरू हो गया है। मिर्ची कैफे, वेलकम ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम है पारुल और आपने अभी सुना एक मिक्स टेप वाला गाना, जैसे इतना मजा आता है ना सुन के, दो गाने जो बहुत प्यारे हैं, एक दूसरे के अंदर ब्लेंड हो रहे हैं ब्यूटीफुली, नीति मोहन शेखर अफजियानी की आवाजें, एंड यस इन दोनों मूवीज में कॉमन फैक्टर है इमरान खान, जिनको यार ऐसी क्यूट रोम कॉम्स में बड़ा मिस कर रही हूँ मैं आजकल। कहाँ है इमरान खान, कम बैक। वेल, मैं वापस आ चुकी हूँ ये शो लेकर आपके लिए। बहुत सारे ना ऐसे लोग होते हैं जो बहुत वेल बिहेव्ड होते हैं, पोलाइट होते हैं, स्वीट होते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं कि यार कितने अच्छे से बात करती है। देख, बड़े लोग भी उनका एग्जांपल देते हैं, हम भी उनका एग्जांपल देते हैं सबको कि यार ये बड़ी वेल स्पोकन स्वीट इंसान है यार। पर आपको पता है एक बहुत प्यारा एक छोटा सा टेस्ट है, जो लोग उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, जो उनके किसी काम नहीं आने वाले, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, वो एक्चुअली में असलियत में अच्छे लोग होते हैं। कभी नोटिस करना ये बात आप, द वे पीपल बिहेव विद यू नो समवन ऑर्डिनरी या समवन जो उनकी लाइफ में कुछ मदद नहीं करने वाले हैं, उनके साथ जो बिहेवियर है दैट शोज योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी कि आप कितने ग्रीन फ्लैग हैं या रेड फ्लैग हैं। वेल, अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। शो शुरू हुआ है अभी, दो घंटे यहीं पर ही बेहतरीन गाने आपके लिए लाइनअप किए हैं मैंने आज, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाना। और सुनो, बिना बताए तो बिल्कुल मत जाना हाँ, लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, मेरा आईडी है paruls.world, आप मुझे गाने भेज सकते हो, बता सकते हो अपने बारे में। ऑल्सो माई व्हाट्सएप नंबर इज 7045983983 एंड दिस ट्रैक फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती, खो जाओ इसमें, मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ है सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं
2: चाहिए
1: इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? मैं
1: डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया। आपका ग्रुप मिल गया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी, जी।
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं?
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah, live.

0: के एंड इमरान हाशमी. अभी आपने गाना सुना दिल इबादत फ्रॉम द मूवी तुम मिले.
1: मिर्ची कैफे,
0: मैं हूं आपके साथ पारुल. शो चल रहा है मिर्ची कैफे और एक चीज नोटिस करवाती हूं आपको, ठीक है? क्यों हमेशा ऐसा कहा जाता है कि के की आवाज या इमरान हाशमी पे फिल्माए सारे गाने, यू नो देयर इज दिस मैजिक. पहली चीज, अभी आपने सुना दिल इबादत. जब भी कोई किसी से प्यार करता है, व्हाई इज इट कॉल्ड कि इबादत कर रहा है उस इंसान की? क्योंकि आप सेल्फलेसली प्यार कर रहे हो. वो ही प्योरिटी और मैडनेस और डिवोशन केके की आवाज में भी सुनाई देता है. एंड इफ यू रियली थिंक, इमरान हाशमी की शक्ल पे वो प्योरिटी इनोसेंस है जिससे भी वही सेम फीलिंग आती है ना? एंड हेंस हमें ये फील होता है कि ये मैजिक क्रिएट होता रहता है टाइम एंड अगेन, हमेशा हमेशा के लिए. लेकिन आपको पता है, हम जिससे प्यार करते हैं उसकी इबादत में लग जाते हैं. दैट फीलिंग, यू नो, जो कुछ वक्त तक तो लास्ट करती है, बट देन द रियलिटी हिट्स और फिर चीजें चेंज होने लगती हैं. वो पता है क्यों होता है? क्योंकि पीपल गिव यू व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर वर्दी ऑफ. यू नो देयर इज वन पर्सन इन द रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, नॉट ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप. डोंट फॉरगेट, जितना वो इंसान वर्दी है या केपेबल है वो करेगा, उससे आपकी सेल्फ वर्थ डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं हो रही है. एंड हेंस इट इज सेड कि भाई पहले खुद से प्यार करो ना. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो जो उंगली हम दूसरे की तरफ उठाते हैं और फिर यू नो देयर इज अ डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप, उसके पहले हमें ऐसे सेल्फ चेक कर लेना चाहिए क्विकली बिफोर डूइंग द सजदा एंड इबादत दैट वी डू. अगला गाना आपके लिए अरिजीत सिंह और नेहरा जोशी देश पांडे की आवाज में. आई Absolutely love this song. This is from the film called Kill Dil. और आप ना सिर्फ एक काम करना, अभी थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लो रेडियो का और इस गाने की ऐसे आप वर्सिटिलिटी देखना कि कैसे ये शुरू होगा, किस डायमेंशन तक ये जाएगा और ऐसे हिला के रख देगा आपको. मतलब दिस इज अगेन अ मैजिक ऑफ गुलजार साहब की राइटिंग, शंकर महादेवन का म्यूजिक. दिस जस्ट हिट्स द राइट कॉर्ड. सुनो इस गाने को, मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद. सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट. सोचना जरूर जो मैंने कहा उसके बारे में.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव।

किसी के लिए। हाँ, what a beautiful thought. By the way, क्या आपने इस गाने को पूरा ठीक से सुना है? क्या आपने इसके मिडिल में कहीं पे 1:35 के आसपास एक आलाप लेते हैं अरिजीत सिंह? क्या आपने राबता गाने में वो सुना है? अगर नहीं सुना, इस बार मिस किया है, तो प्लीज आप मेरे कहने पे जाके सुनो. द मैजिक, द प्योरिटी, द एफर्टलेसनेस जिससे अरिजीत सिंह गाते हैं. एंड यू नो, आपने भी सुना होगा या रील में कहीं ना कहीं देखा होगा कि अरिजीत सिंह जब अपने कॉन्सर्ट में ऐसी रैंडम आलाप गा रहे होते हैं, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड सोलफुल स्पेक्टिकल इन लाइफ. क्योंकि भाई, मैजिक है बंदे में, कुछ भी कहो. मिर्ची कैफे सुन रहे हैं आप. मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. अभी आपने सुना राबता. एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको. देखो, हम इतने प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने आपके लिए लेकर आए हैं, अभी हमने सुने सारे, पर मुझे पता क्या लगता है, हम ना पूरे शरीर में अपने गलत ऑर्गन को रोमांटिसाइज करते हैं. क्या दिल दिल दिल के पीछे पड़ रहे थे हम? आई थिंक द स्टमक इज मोर इमोशनल देन द हार्ट. पेट से होके जाता दिल का रास्ता है तो बचपन से सुनी रहे ना हम. वैसे भी आप देखो, बटरफ्लाई स्टमक में होती हैं. अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले हमारी एपेटाइट खराब होती है. मूड खराब है तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, या फिर यू नो, अगर थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रही है तो बहुत ज्यादा ऐसे हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, डिप्रेसिव ईटिंग कर रहे हैं, स्वीट खाई जा रहे हैं जबरदस्ती. सो आपको नहीं लगता? मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है. हो सकता है कि ये साइंटिफिक भी हो कि हमारी जो स्टमक है ना, वो हमारे इमोशंस को हार्ट से ज्यादा अच्छे से फील करती है. क्या कहते हो? वेल, एक और चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा फील करते हैं, वो है नजर लगना, है ना. मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, जैसे मान लो किसी ने वर्कआउट शुरू किया है या किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हमको कहीं भी कुछ किसी को बताने से पहले या पोस्ट करने से पहले बहुत घबराहट होती है कि नजर लग जाएगी. एंड ऑफ कोर्स ये एक इतना लेंथी टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है कि इसके बारे में हम बात करते रहेंगे. बट जो अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, यार अगर आपने रांझना देखी है, अगर आपने वो बहुत ही प्यारे मोमेंट्स देखे हैं बिटवीन अभय देओल और सोनम का कैरेक्टर, यू नो, वेयर द इज अ लिटिल रोमांस वाज ब्लॉसमिंग और वो एक दूसरे के साथ साथ ऐसे भटक रहे हैं इधर उधर, यू नो, यार ये गाना ना मैं बहुत दिनों बाद अचानक सुना. आई हैड फॉरगॉटन दिस ऑलमोस्ट, पर राशिद अली और नीति मोहन की आवाज में जब मैंने ये गाना सुना रिसेंटली, तो मैं इसको पकड़ के खींच के लाई हूँ आपको सुनाने के लिए. तो यू नो, हमने रांझना के बहुत सारे गाने सुने जो हमें पता हैं और याद रहते हैं. This is one of those जो ऐसे forgotten हो जाता है, और फिर अब जब आप सुनोगे, you'll feel that vibe. नजर लाए इस गाने का नाम है. सुना इसको और मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा गाना सुन के. 7045983983 is my number. Instagram paruls.world. दोनों में कहीं भी लिख सकते हो. फिलहाल enjoy करो इस गाने को. आ रही हूँ छोटे से break के बाद. Stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
2: मैं करूँ?
3: आप करोगे?
2: नहीं, मैं करवाता हूँ. मतलब मेरा होता है.
3: सर, वो तो पता है. मेरा बस चलता है, एक एक को घुसड़ मार के आती हूँ.
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड?
1: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आपका मन चुरा कर ले जाए तो उसे क्या कहेंगे? थिंक मंचूरियन।
1: इतने अच्छे गाने के बाद इतना गंदा जो। मिर्ची कैफे।
0: वेलकम टू मिर्ची कैफे। सुन रहे हैं आप मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। उदित नारायण साहब की इतनी सुमधुर आवाज, इतना गजब के गाने, ए अजनबी फ्रॉम द कल्ट फिल्म दिल से। वेल, ये ए अजनबी आपने सुनाए कभी? मैं अब आपको एक दूसरा ए अजनबी सुनाने वाली हूँ। अगर आपने ये गाना अभी तक नहीं सुना है, फर्स्ट लेट मी रिमाइंड यू, एक शख्स हैं जिनका नाम है आदित्य रिखारी। ओके, ही इज यू नो काइंड ऑफ अ करंट फेवरेट सिंगर। बट अगर आपने इश्क है सुना है आदित्य रिखारी का, अगर आपने साहिबा सुना है, ही हैज अ वेरी डिफरेंट मैनिपुलेटिव वॉइस, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज इनके गाने ना हमेशा फ्रेश लगते हैं, और जब भी आप सुनते हो ऐसा लगता है वो लूप बस चलता रहे और आप सुनते रहो। दिस वन ट्रैक जो कि आदित्य रिखारी, रेवेटोर और कतले खान ने मिलकर कंपोज किया है और गाया भी है, दिस इज फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत सीजन 4। इसमें ना ऐसे बीच में आप 1:35 पे और एक और बार टूवर्ड्स द एंड कतले खान साहब की आवाज में कुछ ऐसे यू नो फोक राजस्थानी रेफरेंसेज आएंगे, छोटे छोटे पीसेज। एंड यू नो दिस ओवरऑल दिस गाना, दिस इज अ रियली कूल सॉन्ग। और मुझे भी मजेदार बात लग रही थी कि मैं आपको दो दो ए अजनबी गाने टाइटल वाले एक साथ सुनाऊं। सो यस, लिसन टू दिस ट्रैक और आपको पक्का अच्छा लगेगा। तो सुना ये अगला गाना फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत सीजन 4। छोटे से ब्रेक के बाद एक मजेदार कहानी सुनाने के लिए आने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे। मेरा नाम है पारुल। इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताऊँ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूँ।
1: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।

0: 2003 की ये मूवी थी अरमान. सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में आपने एक गाना सुना अभी अभी. और आपको याद है अरमान मूवी का एक और गाना था प्रीति जिंटा के ऊपर पिक्चराइज्ड. तो प्रीति जिंटा जिसका कैरेक्टर निभा रही है वो लड़की ऐसे टेररराइज कर रही होती है कि मेरे दिल का तुमसे है कहना, मेरे ही रहना नहीं तो समझे. यू रिमेम्बर एग्जैक्टली दैट सेम मूवी जिससे ये गाना है मेरी जिंदगी में आए हो. बहुत दिन बाद सुना था ये तो मुझे लगा कि आपके लिए लेकर आऊं.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ ओनली ऑन मिर्ची. कुछ कहानियां ना लाइफ में एक्चुअली ऐसी इंटरेस्टिंग होती हैं कि कोई आपकी जिंदगी में आता है और आई डोंट नो वेदर इट इज कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट, बट हाँ कुछ तो ऐसा होता है जो क्लिक होता है. बिकॉज ऐसे चलते चलते हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से हमारी आंखें टकराती हैं, बट कुछ आंखें ऐसी होती हैं विच दैट सोल चेक, जो इंस्टेंट कनेक्शन आंखें मिलने से फील होता है. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? जरूरी नहीं है कि आपको प्यार हो जा रहा है हर किसी से, पर हाँ कुछ लोगों से मुलाकात एक कुछ अलग फील होती है. तो 1998 में वो एक पार्टी पे मिले थे जब दोनों की फिल्में रिलीज हुई थी. ठीक है, 8 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, इंस्टेंट क्लिक था उनका, और फिर 2006 में उनकी शादी हुई. मैं एक ऐसे बॉलीवुड कपल के बारे में बता रही हूँ, लेकिन यू नो व्हाट इंटरेस्टेड मी मोर वाज मुझे एक्चुअली बहुत लेट पता चला था कि ये इनकी वाइफ हैं. सो हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग? आपने करीब मूवी देखी थी, बॉबी देओल, नेहा एक लड़की थी बहुत प्यारी सी, उनकी फिल्म आई थी करीब जिसमें वो गाना था चुरा लो ना दिल मेरा टडंग सनम, राइट? तो वो जो लड़की है नेहा, वो उनकी करीब फिल्म रिलीज हुई थी. और ये जो हमारे साहब हैं, इनकी फिल्म रिलीज हुई थी सत्या. कैन यू गेस हुम आई एम टॉकिंग अबाउट? नेहा इज द वाइफ ऑफ मनोज बाजपेयी. गाइस मुझे ये नहीं पता था, अगर आपको पता था तो वेल वेरी गुड, बट मुझे बहुत लेट पता चला मुझे लगा कि आपको बताती हूँ. मेन बात जो मुझे आपको बतानी थी वो यही थी कि मनोज बाजपेयी की वाइफ है दिस गर्ल जिसको आपने करीब में बॉबी देओल के साथ इतनी प्यारी सी सुंदर सी भोली सी लड़की डांस करते हुए देखा. ऑफकोर्स वी अंडरस्टैंड मनोज सर. यही गाना मैं अभी आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम द फिल्म करीब. ये मेरी आज टाइम मशीन का गाना है विद द स्टोरी बिटवीन मनोज एंड नेहा. सुनो इस गाने को कुमार सानू और संजीवनी की आवाज में ओनली ऑन मिर्ची कैफे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावबाजी।
3: शाबाश। डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11।
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: स्टोर करता है।
3: शाबाश। लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन।
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
4: पीके मेनन।
3: खत्म।
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता। आदमी का नाम राजकुमार राव, रेडियो स्टेशन का मिर्ची। इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live in Qatar, presented by iPay.
9: कैसे किया, seriously? कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.

Have you ever heard the marigold theory? Marigold होता है ना, वो क्या करता है कि insects वगैरह को दूर रखता है अपनी सुगंध से, whatever fragrance it has, उससे that plant has that aura, that vibe, और उसमें ऐसे scientifically constructed कुछ you know chemicals होते हैं कि वो अपने आसपास के और पौधों को अच्छे से flourish करने में help करता है. And you know I'm not talking about that plant only. कुछ लोग होते हैं ना जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं और हमें सडनली फील होती है ऐसी बर्स्ट ऑफ एनर्जी, हैप्पीनेस. और कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ड्रीमिंग होते हैं. आप उनसे एक मिनट भी बात करोगे ना इन योर ऑफिस या कहीं मिल गए आपको पड़ोसी वड़ोसी चलते फिरते, आपको ऐसा लगेगा यार अच्छा सा नहीं लगा इस इंसान से मिलके, यू नो अंदर से यू फील सम सैडनेस. सो बेसिकली ना ये मैरीगोल्ड थ्योरी के बारे में पढ़कर मुझे एक ऐसा चेक ऑन करने का मन किया अपने ऊपर, जो कि आप सब भी कर सकते हो. क्या आपकी एनर्जी वैसी ड्रेनिंग वाली है? क्या आप जिससे मिलते हो वो सामने वाला अच्छा फील करेगा आपसे मिलने के बाद या ड्रेन्ड फील करेगा? कीप दैट चेक ऑन हमेशा. अगला गाना आपके लिए लेकर आई हूँ सोनू निगम और माँ लक्ष्मी अय्यर की आवाज में. भाई ये एक ऐसा रोमांटिक गाना है जिसको आप जब भी सुनोगे ऐसा लगेगा अभी अभी कहीं से ऐसा ताजा ताजा निकल के आया. बंटी और बबली से ये गाना है. दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची कैफे. आपके लिए लेकर आई हूँ, मेरा नाम है पारुल. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. इट्स हॉट.

0: सपने मूवी से आपने गाना सुना, जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स, के एस चित्रा शंकर महादेवन की आवाज, ए आर रहमान सर का म्यूजिक। बड़े दिनों बाद सुनाना है गाना, सच बताना।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। काजोल थी इसमें, बड़ी प्यारी फिल्म थी, और इसके जो लिरिक्स है ना, एक बगिया में रहती है एक मैना, उस बाग से मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। सो

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: अरे यार, आशा भोसले की अमेजिंग आवाज में जानम समझा करो का ये गाना, ऑफ कोर्स एल्बम का, मूवी का नहीं, रात शबनमी। यार मेरे शो पे यू नो दिस मिर्ची कैफे, आप हमेशा ये देखेंगे कि कोई ना कोई 90s पॉप एरा से मैं गाना लेकर आती ही आती हूँ आपके लिए, बिकॉज यू नो हमने वो जो जमाने थे जो कैसेट में भरवा भरवा के गाने अपने लिए रखे थे, यार उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं कभी भी, नॉट एवर। ओके,
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और मैं आपको अभी यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट बताने वाली हूँ जो पता नहीं आपने कभी सुनी है नहीं सुनी है, एंड इट्स अ लिटिल यू नो ऑफ बीट बिकॉज सब आपको ऐसे इंग्लिश की किताब में बताते हैं, मोस्टली द बुक रीडर्स दे लव रीडिंग इंग्लिश बुक्स। अगर आपने कभी भी कोई हिंदी की किताब नहीं पढ़ी है, जस्ट लिसन टू दिस, मैं आपको ऐसे कुछ 3-4 हिंदी की मेरी फेवरेट बुक्स के नाम बता रही हूँ जिन पे रिसेंटली एक पिक्चर भी बनी, OTT पे जो रिलीज हुई थी सीरीज। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है, कभी आपको मौका मिले, यार हिंदी की किताबें पढ़ना इज अ लेजिट थिंग। ओके, सुन लो अच्छे से, गुनाहों का देवता, अक्टूबर जंक्शन, गोदान, मधुशाला एंड मुसाफिर कैफे, ये किताबें By God, अगर आपने कभी पढ़ी ना आपको मजा आ जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, गुनाहों का देवता, अक्टूबर जंक्शन, गोदान, मधुशाला या फिर मुसाफिर कैफे, कोई भी किताब अगर आपने इनमें से पढ़ी है ओके, तो मुझे जरूर लिखना। 7045983983 इज माई व्हाट्सएप नंबर, असाइड इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है paruls.world। यार लेट्स डिस्कस हिंदी बुक्स, क्योंकि मुसाफिर कैफे ने ये बात अच्छी शुरू कर दी है जब से वो सीरीज आई कि यू नो पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिंदी बुक्स लेजिट। और मैंने भी पहले पढ़ी थी और अब मैं बहुत वक्त से हिंदी बुक्स नहीं पढ़ रही थी, एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू देम बिकॉज व्हाई नॉट। अगला गाना प्रियांश श्रीवास्तव, जोनिता गांधी, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम मुसाफिर कैफे, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे फील वाले गाने हैं मैन, मजा आ गया मुझे इनको सुनकर। और क्योंकि मेरे शो का नाम है मिर्ची कैफे और यहाँ पर आपकी पसंद का ध्यान रखना मेरा काम है, लिसन टू दिस ट्रैक। अभी आ रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: सच सच बताना कितने दिनों बाद सुना आपने ये गाना. कुमार सानू की बेहतरीन आवाज में ये बेहतरीन गाना फ्रॉम दोज इयर्स. कुछ ना कहो यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप. मिर्ची कैफे मेरी यानी पारुल के साथ. शो के एंड तक आते आते मैं थोड़ी सी उदास हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अरे यार अब नेक्स्ट एपिसोड पे आपसे बातचीत करने का वेट करना पड़ेगा मुझे, और वो भी फिर यू नो कुछ वक्त बाद आएगा टाइम. सो आई होप आपको मजा आता है ये गाने सुन के जो मैं आपके लिए स्पेशली चुन चुन के लाती हूँ. आज मैं उन सबको थैंक यू करना चाहती हूँ. सो आकाश, गगन, पी शर्मा, राज, मौलिका, विवेक पटनायक, निलाद्री, थैंक यू सो मच. जब भी मेरा शो चल रहा होता है मुझे आपके मैसेजेस आते हैं, आप मेरे गानों में डीपली इन्वॉल्व रहते हो, मुझे बताते हो कि कौन से गाने आने चाहिए. तो सुनो, मेरा जो ये रूम है ना जहाँ पे मैं बैठी हूँ स्टूडियो, उसमें सामने एक खिड़की है जिससे मुझे बाहर पेड़ दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं, और मैं आप सबसे बात कर रही हूँ लेकिन मैं बैठी एक कमरे में हूँ एक माइक पे. रेडियो का जो ये मैजिक है ना कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज जो भी रेडियो सुनता है उसकी एक अपनी अलग पिक्चराइजेशन बनती है. ये सब OTT वीडियोस रेडियो का मैजिक कहीं नहीं जा सकता. अगर आप भी इस बात को ट्रस्ट करते हैं मुझे अभी लिखकर भेजिए हाय हेलो लेट्स चैट. और आप अगले एपिसोड पे कौन सा गाना सुनना चाहते हो ये तो आप मुझे हमेशा लिख सकते हो. 7045983983 व्हाट्सएप नंबर, paruls.world यानी कि मेरी दुनिया इंस्टाग्राम पे ढूंढो इस आईडी को और मुझे DM करो. मैं सबका जवाब देती हूँ, पक्का झूठ नहीं बोल रही, ट्राई करके देख लो. अगला गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल, खबर नहीं. क्योंकि आसमान और जमीन कहाँ है, हमारी जिंदगी आगे कहाँ जाने वाली है, कुछ खबर नहीं होते हुए भी रोज हम उस जद्दोजहद में लगे रहते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, द अनप्रिडिक्टेबिलिटी. नहीं चलो ठीक है, इसी थॉट के साथ यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ आपको. अगले एपिसोड में मुलाकात होगी फटाफट से, तब तक के लिए इंस्टाग्राम और नंबर आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ. लेट्स कैच अप देयर. सुनते रहो मिर्ची, मेरा नाम है पारुल. मिर्ची कैफे इज द शो. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल और मेरा बर्थडे आने वाला है और ये बात मेरे जितने लोग को पता है आसपास उस बारे में वो बहुत खुश हैं, मुझे याद दिलाते रहते हैं कि 10 दिन रिमेनिंग, 9 डेज रिमेनिंग ऐसा करके। मुझे इस बात का कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों है। मुझे ना ऐसा बर्थडे वाले दिन पे कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है बचपन से। आई फील वेरी एंग्शियस जब भी मेरा बर्थडे आ रहा होता है ना कि उस दिन कुछ अलग सा होगा, कुछ अलग करना, पता नहीं क्या लगता है मुझे। फैजान हाशमी साहब का वो शेर याद आता है कि मैं अपनी खुशियां अकेले मनाया करता हूं, मैं अपनी खुशियां अकेले मनाया करता हूं, यही वो गम है जो तुझसे छुपा है मेरा। क्या बात है, मुझे लगता है गम तो क्या, बस ये अजीब सी बात है। आपको भी ऐसा होता है क्या? अगर आप भी ऐसे शख्स हैं जो कि अपना बर्थडे मनाने में हिचकिचाते हैं, मन करता है बर्थडे के दिन की जमीन खुले और आप उसमें समा जाएं, तो लिख भेजें अपना एक्सपीरियंस मुझे मेरे इंस्टाग्राम RJ ताशी मिर्ची पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi. Iska bana, puska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. Nafiyat bala burka. Mirchi burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार। सारे दिमाग
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो।
3: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका। चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो में।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
3: महेंद्र सिंह धोनी, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: अच्छा, ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
2: अच्छा, कुकड़ो को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
1: Mahendra Singh

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू,
1: कि आपका दाशी मिर्ची महफिल पर नजर करे आपको आज का शायर। आज आपको रूबरू करा रहे हैं शमीम अब्बास साहब से। शमीम अब्बास साहब इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो मॉडर्न शायर्स में बड़े विख्यात हैं, मुंबई के हैं। 1948 में इनका जन्म हुआ था और इनका एक शेर है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। कहते हैं कि याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, फिर सुबह तलक सोचते रहते हैं वो क्या थी। अरे रे रे रे भाई, मुझे ADHD है ना, तो मेरा ना ऐसे याददाश्त थोड़ी सी ऐसी रहती है कि मतलब कभी कुछ याद आता है कभी कुछ भूल जाता हूँ। तो मैं तो इस शेर से एकदम कनेक्ट करता हूँ। शमीम अब्बास साहब ने क्या बारीक बात को नोटिस करा है कि याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, फिर सुबह तलक सोचते रहते हैं वो क्या थी। जिंदाबाद। अगर आपका भी कोई पसंदीदा शेर हो लिख भेजें भाई साहब मेरे इंस्टाग्राम RJTashi MIRCHI RJTashi मिर्ची पर बिल्कुल। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9170983983, वहां भी बात कर सकते हैं आप मुझसे। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार, तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपके दाशिए आपके साथ। और एक तरीके का प्यार ये भी बताया गया है लिटरेचर में कि जमाने में ऐसा भी प्यार हुआ है लोगों को कि उन्हें हर जगह अपना प्रेमी दिखाई देता है। माशूक की नजर जो है वो हर जगह माशूक को ही ढूंढ लेती है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, हर जगह उन्हें अपने प्यार की एक झलक दिखाई देती है। चिराग शर्मा का एक शेर नजर कर रहा हूं आपके कि मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब, मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। आय हाय हाय हाय, मतलब शाखें एकदम गुलाब ऑफर कर दे रही है भाई, ऐसा वाला सीन हो जा रहा है। और प्यार में इंसान जो है वो इतना खतरनाक है कि उसे लग रहा है कि आय हाय हाय मेरी माशूक की तरफ से आ रहा है, तो क्यों ना इसे नोच लूं मैं, इस गुलाब को मैं। मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। चिराग शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ। अगर ऐसा ही आपको कोई पसंदीदा शेर हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं आरजे ताशी मिर्ची पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे 9170983983 पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
0: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी करे आपको नजर आज का ताशी अनप्लग्ड। और यार ये गजल जो है मेरी बड़ी पसंदीदा है, ये खयाम साहब की म्यूजिक है, इसमें बेगम अख्तर ने इसे गाया है और क्या तो गजल है। दोस्त दाग दहलवी साहब की गजल का उनवान है, उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं। और आप इसकी ने कॉम्पोजिशन खयाम साहब की देखें और बेगम अख्तर साहिबा ने तो क्या ही गाया है। मतलब मैं तो उसका I'm just a lover of this ghazal, तो इसलिए एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से।

आने में भी है, खयाम साहब की कॉम्पोजिशन थी और ओरिजिनली बेगम अख्तर जी की आवाज में दैट वाज अ दाग दहलवी साहब की लिखी हुई गजल, बड़ी पसंदीदा गजलों में से एक है मेरी। और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो बिल्कुल भाई साहब, मतलब आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, कहाँ बोलेंगे मुझसे, मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर या फिर मेरे व्हाट्सएप 9170 हाँ क्या 9170983983 पर। बिल्कुल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
2: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आप कताशी है आपके साथ। और अभी हाल में ना हमारे देश में कई जगहों से ये पुकार आई कि अरे पेड़ काटे जा रहे हैं, इन पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही गुहार थी, बिल्कुल सही पुकार थी। उसी से जुड़ा हुआ अतुल अजनबी साहब का एक शेर आपको मैं नजर करूंगा, जो कि मुझे इतना प्यारा लगा कि नेचर किस तरीके से ना गिविंग है उसके अंदर, बस देना जानता है, बस देता रहता है। अतुल अजनबी साहब कहते हैं कि सफर हो शाह का यह काफिला फकीरों का, सफर हो शाह का यह काफिला फकीरों का, शजर पेड़ शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। अब भाई शाह गुजर रहा हो, कोई बहुत बड़ा आदमी गुजर रहा हो, या फिर फकीर गुजर रहे हो, पेड़ समझते हैं कि गुजरने वाले को क्या चाहिए, और वो है थोड़ी सी छांव, थोड़ी सी ठंडक, थोड़े से फल, है ना। सफर हो शाह का या काफिला फकीरों का, शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। जिंदाबाद। ये नेचर जो हमें इतना कुछ देती आई है, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। और आपको क्या लगता है ऐसा क्या करना चाहिए नेचर के लिए, हम क्या कर सकते हैं, लिख भेजिए मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप 9170983983 पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
0: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah live.

0: कविता कॉर्नर। कविता कॉर्नर।
1: क्या आप कैताशी, आपको आज के कविता कॉर्नर में सुनाए दो छोटी छोटी कविताएं। ठीक है, ये कविताएं ट्रांसलेशंस हैं अब्बास के रस्तमी साहब की। अब ये एक ईरानियन फिल्म मेकर हुए, बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर, जो फिल्म की दुनिया से लोग हैं उनको इनका नाम पसंद होगा, या फिर जो देखते भी हैं, शौकीन भी हैं फिल्म्स के, उनको अब्बास के रस्तमी का नाम पता होगा। और उनकी दो कविताएं मैं आपको सुना रहा हूँ, आप बस ये देखें कि इनकी लिखाई में भी कितना विजुअल लिखाई है, कितने ऐसा लगता है देख रहे हो आप सामने। पहली कविता का नाम है हवा। पुराने किवाड़ को खोलती है और बंद करती है जोर जोर से 10 बार। बस ये थी कविता। पुराने किवाड़ को खोलती है और बंद करती है जोर जोर से 10 बार हवा। अगली कविता अलगाव। कहते हैं कि पतझड़ की दोपहर चिनार का पत्ता आहिस्ता से अलग होकर गिरता है अपनी ही परछाई पर। ओए होए होए होए, वो जो अपनी परछाई पर गिर रहा है ना, वो इतना खूबसूरत है। असद जैदी साहब ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है कि पतझड़ की दोपहर चिनार का पत्ता आहिस्ता से अलग होकर गिरता है अपनी ही परछाई पर। बिल्कुल जी, दैट वॉज अब्बास की रस्तमी। और आपने देखा किस तरीके की विजुअल पोएट्री लिखी अब्बास साहब ने, क्योंकि फिल्म मेकर हुए है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका ताशी आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपके दाशी है आपके साथ। और यार अब सुन ही लें आप, शमीम अब्बास साहब को हम बहुत पढ़ रहे हैं और बहुत पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे उनके शेर पसंद आ रहे हैं हमें शमीम अब्बास साहब का। आज के शो में ये दूसरा शेर है जो हम आपको नजर कर रहे हैं, ठीक है? दो शेर चलते हैं यार और क्या। और इतना खूबसूरत शेर लगा ना मुझे ये, क्योंकि होता क्या है व्हेन यू आर इन योर थर्टीज, व्हेन यू आर यू नो एट दैट एज, कोई भी जब ब्रेकअप वेकअप हो ना तो ऐसा लगता है कि यार भाई कोई रिलेशनशिप टिक नहीं रही है, भाई 30 के हो गए और तब भी कुछ नहीं टिक रहा, क्या होगा, ऐसा वाला हो जाता है दिमाग, है ना? क्योंकि यार 20s में ब्रेकअप होते हैं तो इंसान हल्के में लेता, हाँ हाँ ठीक है जाओ कोई और मिल जाए, और मतलब मिल तो जाएगा भाई कोई और ज़रूर, लेकिन वक्त दौड़ रहा है। और इसी पे शमीम अब्बास साहब का शेर है, कहते हैं कि कोई ऐसे वक्त में हमसे बिछड़ा है, कोई ऐसे वक्त में हमसे बिछड़ा है, शाम ढले जब पंछी घर लौट आते हैं। भाई यार क्या इमेजरी है, मतलब इमेजरी देख रहे हैं आप, क्या समा बनाया है कि कोई ऐसे वक्त में हमसे बिछड़ा है, शाम ढले जब पंछी घर लौट आते हैं। हाँ भाई क्या मतलब, मैं तो सब बोल दिया है मैंने। आपको अगर कुछ बोलना हो इस पे तो आप बिल्कुल लिख भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9170983983 पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
0: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से।
1: कि आपका ताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपके नजर मिर्ची महफिल में। बिल्कुल जी, और पता है जब यंग थे ना, तो इंसान जब जवान होता है तो बड़ा आइडियलिस्टिक होता है कि अरे बाप रे, मैं तो बिल्कुल सच के साथ हूँ, सत्य के साथ हूँ, सही के साथ हूँ। और मतलब बड़ा होता है तब भी वो मतलब सत्य के साथ रहता है, सच के साथ रहता है, लेकिन फिर ना वो आइडियलिज्म चला जाता है, उसको ना दूसरों के पहलू दिखने लग जाते हैं जब वो बड़ा होता है। तो एक ये उबैद आजम आजमी साहब का शेर मुझे इतना सटीक सही शेर लगा ना, ये कि देखता हूं तो नहीं रहम के काबिल कोई, देखता हूं तो नहीं रहम के काबिल कोई, सोचता हूं तो हजारों पे तरस आता है। भाई क्या गहरा शेर है ये, क्या गहरा शेर है, कि मतलब दूर से तो आप गुजर जाएं तो बोले अरे हाँ हाँ ये गलत था, ये सही था, ऐसा वैसा वैसा, लेकिन अगर आपने गलत इंसान के दिमाग में झांक लिया एक बार तो आप उतनी आसानी से शायद उसे गलत ना कह पाए। देखता हूं तो नहीं रहम के काबिल कोई, सोचता हूं तो हजारों पे तरस आता है। जिंदाबाद मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, ताशी है आपके साथ। और ऐसा कौन सा किस्सा है जिसमें आपको दूसरे का पहलू दिखा कभी, बताइए मुझे मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप 9170983983 पर। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और दोस्त मुझे ना मंजर कशी कहते हैं इसे, मतलब सीन सेट करना शायरी में इतना खूबसूरत लगता है जब भी कोई शायर इसको सक्सेसफुली कर पाता है। एंड आई थिंक हसन कमाल साहब ने कमाल कर दिया है, सक्सेसफुली ये काम कर दिया है, वो जो मंजर कशी का काम होता है वो कर दिया है। अब आप शेर देखें कितना खूबसूरत है कि सूरज लहू लुहान समुंदर में गिर पड़ा। आय हाय हाय, सीन लहू लुहान है वो, क्योंकि सूरज ढलता हुआ कैसा दिखता है। सूरज लहू लुहान समुंदर में गिर पड़ा, दिन का गुरूर टूट गया, शाम हो गई। भाई साहब, मतलब सनसेट को तुम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। सूरज लहू लुहान समंदर में गिर पड़ा, दिन का गुरूर टूट गया, शाम हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, मजा आ जाता है ना जिनको सुन के, ऐसा वाला शेर है ये, है कि नहीं। स्टेडियो टू मिर्ची, आपका दाशी आपके साथ, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप। और अपना पसंदीदा अगर कोई शेर हो तो लिख भेजिए मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप 9170983983 पर। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो. हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका. इंजेक्शन मत दो उसको. वन सेकेंड. मिस्टर मनोज
3: जी बोल रहा हूँ.
2: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ. प्लीज यहाँ पे आ जाइए. मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी.
3: कहाँ ना सर?
2: हॉस्पिटल. प्लीज आप जल्दी आ जाइए.
3: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
2: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए. आगे ले आओ.
3: मैं दे दूंगा.
2: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी. इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं.
3: 4 यूनिट?
2: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ. मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको. आगे ले आओ. अब आगे ले आओ उसको. आगे ले आओ. ब्लड नहीं चाहिए इसको. हाँ, ब्लड नहीं चाहिए इसको. यूरिन की कमी हो गई है. आपका यूरिन चढ़ाना है. प्लीज जल्दी आ जाएंगे.
3: क्या चढ़ाना है?
2: यूरिन चढ़ाना है. इसका सारा यूरिन खत्म हो गया. प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे.
3: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है.
2: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से. असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था. ये रात को बाहर निकल गया. इसको मना भी किया था पहले. मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था. इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो. ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था. चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया.
3: पेशाब निकल गया. मैं पेशाब
2: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
3: सर. इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
3: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है. मैं आपको बताता हूँ. ये मेरे पास सारी डिटेल है. 1 सेकंड रुकिए. कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे.
3: जी जी.
2: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं.
3: अच्छा.
2: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है.
3: क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आ रहा.
2: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है. प्लीज जल्दी आ जाइए यार.
3: अभी तो सर लग नहीं रहा. 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
2: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा. कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए. और आप इतना वो परेशान मत होइए. आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
3: जी
2: वो हम चढ़ा देंगे आपके. आप फिक्र ना करें.
3: सर नंबर कहाँ मिला आपको?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है. अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा. तुम रेडियो मिर्ची पे हो. तुम्हारा मुर्गा बन गया है. मैंने मजाक किया था.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट. दे नीड 12 रन्स टू विन.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर 1 मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
5: Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number 1 mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.

खूबसूरत लफ्ज है ना कि मतलब इस पे आपको डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का एक शेर सुनाते हैं, कहते हैं कि ये आंखें ये आरिज ये लब और गेसू, ये आंखें ये आरिज ये लब और गेसू, इन्हीं के सबब हम ठिकाने लगे हैं। मतलब हमें बोल्ड करने वाले यही सब चीजें हैं, ये आंखें ये आरिज ये लब और गेसू, इन्हीं के सबब हम ठिकाने लगे हैं। दोस्त होता तो यही है, देखो कोई कितना भी बोल ले ना, पहले फिजिकैलिटी अट्रैक्ट करती है, पहले जो आपको दिख रहा है वही आपकी नजर खींचता है, उसके बाद आप इंसान की पर्सनैलिटी जानते हो, उसके अच्छे या उसके बुरे पहलू जानते हो, पहले तो नजर तो शक्ल से ही टकराती है ना, सीधी बात है। स्टेडियम टू मिर्ची, आपका दाशी है आपके साथ, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, और कोई किस्सा सुना दें जब आपकी नजर टकराई थी, कहां सुनाएंगे, मेरे व्हाट्सएप 9170983983 पर, या फिर आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी, आरजे ताशी मिर्ची के नाम से मिल जाऊंगा। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे। लव्स आजकल
1: क्या आप कदाशी आपको मुखातिब कराए हमारे आज के लव्स से, जो है आरिज। आरिज मतलब गाल, दोस्त गाल। और आरिज इतना खूबसूरत

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और मुझे ना विचारधारा के मामले में क्या पसंद है कि कोई इंसान ना किसी का सगा ना हो। होता क्या है कि जब भी कोई किसी विचारधारा का सगा हो जाता है, किसी आइडियोलॉजी का सगा हो जाता है ना, उसको डिफेंड करने लग जाता है या फिर उसको एनालाइज करना छोड़ देता है, वो ना भटक जाता है रास्ते से, क्योंकि वो सच नहीं देख रहा होता। फिर वो देख रहा होता है कि मेरी आइडेंटिटी इस आइडियोलॉजी से जुड़ी है, इस विचारधारा से मेरा सच जुड़ा है और मैं तो इसी को फॉलो करूंगा चाहे जो हो जाए, चाहे वो गलत भी हो। इसीलिए मुझे चिराग शर्मा साहब का ये शेर बहुत पसंद है। कहते हैं मीर तकी मीर बेसिकली एक बहुत बड़े शायर थे, ठीक है, उन्हें खुदाए सुखन भी कहा जाता था, ठीक है। मीर जी इश्क माना कि नेमत नहीं, पर मैं इसको बला भी नहीं मानता। ऑफकोर्स यार, सारे शायरों की तरह मीर तकी मीर साहब ने भी ये बोला कि भाई सुनो, ये सब प्यार व्यार बेकार है, ठीक है, इन शॉर्ट। तो चिराग जी कह रहे हैं कि मीर जी इश्क माना कि नेमत नहीं, पर मैं इसको बला भी नहीं मानता। मानता हूं खुदाए सुखन भी तुम्हें, और हुक्मे खुदा भी नहीं मानता। आय हाय हाय, इतनी सटीक लाइन लगती है ना भाई मुझे, ये मेरे जीवन का फलसफा है सच में। अगर मैं किसी आइडियोलॉजी का होता भी हूं ना, कोई आइडियोलॉजी मुझे समझ भी आती है ना, तो मैं उसका होता नहीं हूं। इन शॉर्ट मतलब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यार देखो, खुदा सुखन हो सकता है, हुक्म खुदा तो नहीं होगा। मीर जी इश्क माना कि नेमत नहीं, पर मैं इसको बला भी नहीं मानता। मानता हूं खुदा सुखन भी तुम्हें, और हुक्म खुदा भी नहीं मानता। एज सिंपल एज दैट। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot. Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi, it's hot.
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
2: मैं करूँ?
3: आप करोगे?
2: नहीं, मैं करवाता हूँ. मतलब मेरा होता है.
3: वो तो पता है. मेरा बस चलता है एक एक को घुसण मार के आती हूँ.
2: My friend. How are you, my friend?
1: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोलडाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल. ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
0: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: ये जाने का वक्त इतना जल्दी आ जाता है ना।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी था आपके साथ एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो। वक्त तो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते दोस्त आपको अपनी पसंदीदा गजल सुनानी तो बनती है, और सुनानी क्या, सिर्फ बजाऊंगा नहीं, गा दूंगा आपके लिए। बिल्कुल जी, दिस इज अ बेगम अख्तर साहिबा की आवाज में ओरिजिनली रिकॉर्डेड गजल, खयाम साहब की कॉम्पोजिशन और दाग दहलवी साहब की लिखी हुई उस गाने में भी है। गलतियां माफ करिएगा, कोशिश है, बस पसंद करता हूँ, गजल सुन लीजिए आप।

उम्मीद है पसंद आई होगी गजल, और अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप लिख भेज सकते हैं मुझको मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9170983983 पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, ताशी था आपके साथ। इट्स टाइम फॉर मी टू गो, इट्स हॉट।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्राई।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग।